नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रूपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमी कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगे और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास में तेजी लाएंगे। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट

0: चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रूपये से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।
2: ये है विविध भारती।

पहले सुनिए चिंतन। चिंतन में आज दार्शनिक सुकरात के विचार। सुकरात के अनुसार भौतिक धन दौलत से ज्यादा इंसान को अपनी आत्मा और चरित्र को शुद्ध करने पर ध्यान देना चाहिए। ये था चिंतन। और अब वंदनवार में आप सुनेंगे भक्तिपद।

अब कैसे कहूँ दुख सारा। सुनो सुनो हे कृष्ण काला, मेरे पाँव तो हो और

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। झरोखा में सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आपसे थोड़ी ही देर बाद में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान का 265वां भाग। संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 6:45 और संध्या 6:45 पर आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा, कलाकार पंडित सी आर व्यास, इसका भाग 4 प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक। सुबह 7 हमारा दैनिक कार्यक्रम भूले बिसरे गीत 7:30 पर आप सुनते हैं हम हैं राही प्यार के। त्रिवेणी का प्रसारण समय सुबह 8:15 और दोपहर 2 आलेख और स्वर राजेंद्र त्रिपाठी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनेंगे सुबह 8:30 और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 पर। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक सोनू निगम पर। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम होगा आज के मेहमान पार्श्व गायक मुकेश की याद में गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र से यूनुस खान की बातचीत का भाग 2 प्रसारित होगा, प्रस्तुतकर्ता हैं जुबैर खान। दिन में 11 रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल और दोपहर 1 आप सुनेंगे सुरीला सफर। सदाबहार नगमे 2:30 पर। सखी सहेली कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 3। आज के विषय रहेंगे बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां, कहानी पद्मश्री की डॉक्टर बुधरी ताती पर आज ये चर्चा होगी, मुझे कुछ कहना है मैं थूकने की बुरी आदत पर बातचीत होगी और जलने कटने पर उपयोगी टिप्स दिए जाएंगे। आज का प्रोग्राम पेश करेंगी सोनाली पाठक।

और आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दोपहर बाद 4 बजे फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप सुनेंगे। संवादक यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। संध्या 5 बजे छाया गीत का पुनः प्रसारण 5:30 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम तराने नए पुराने। संध्या रंजन संध्या 6:35 पर, जयमाला का वक्त है संध्या 7 बजे और संध्या 7:45 पर इंद्रधनुष में आप सुनेंगे इनसे मिलिए। आज पार्श्व गायिका सोनाली बाजपेयी से गणेश शर्मा की बातचीत प्रसारित होगी। रात्रि 8 बजे हवा महल में सुनिएगा झलकी बलि का बकरा, लेखक निर्देशक मुकुल गोस्वामी। रात्रि 9 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए और रात्रि 10 बजे छाया गीत का प्रसारण होगा, आलेख और स्वर जी श्याम का। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। जयरोखा में अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान। आज सुनिए भाग 265।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान का 265वां भाग।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। प्रस्तुत करता है जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास।
1: नमस्कार, अभी गौड़ सारंग के बारे में बात करेंगे। एक गौड़ क्या है, ये एक सोचने की बात है। गौड़ बिलावल है, गौड़ सारंग है, गौड़ मल्लार है, ऐसे जो गौड़ के प्रकार है उसमें एक बात ध्यान में रखने की है कि जिसमें ये म्यूजिकल फ्रेज आती है, सा रे सा ग रे म ग म रे ग सा ग रे म ग, ये संगति जिसमें है वो गौड़ का अंग है। अभी गौड़ सारंग में एक बंदिश पेश कर रहा हूं मैं। ये बंदिश ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा एक पुरानी बंदिश है,

अभी ये बंदिश में या राग का ये मुखड़ा जो सम जो आती है ना दैवत पे आती है, बहुत कम सुनाई देती है ऐसी बंदिश। लेकिन ये बंदिश में दैवत ऐसा रखा है तो एक सोचने की बात है कि गौड़सारंग में दैवत पे बंदिश कैसी रखी है, ऐसे लोग पूछते हैं। लेकिन अभी पुराने जमाने में जो कलाकार थे उसने ये सोच के किया है तो हमको तो ये मानना चाहिए कि ऐसा हो सकता है।

और एक संगति आती है इसमें, जो निषाद पे बहुत ही स्ट्रेच कर रही है। छांड दे मोरी मैया, बहुत सारे कम लोग ये नहीं बताते हैं, लेकिन ये बताने में कोई हर्ज नहीं। जहां तक हमारी पुराने बंदिश में ये जगह रखी है तो ऐसा उसका विस्तार करने में कोई नुकसान नहीं है। अभी गौड़ सारंग, गौड़ बिलावल की एक बंदिश गा के बताता हूं।

मिलावल सब है, बाकी एक गौड़ की संगति रखा है उसके लिए उसको गौड़ मिलावल कहते हैं। गौड़ सारंग की दूसरी बंदिश है।

तो कहने का मतलब ये कि गौशाल में गरे में को संगति बहुत ही प्रोमिनेंट है और इसको बार बार दोहराना चाहिए, तभी ये राग का नक्शा जो है, फेस जो है, बराबर दिखेगा।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा इस श्रृंखला की चौथी कड़ी अभी आपने सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास। हारमोनियम पर इनके साथ संगत की पुरुषोत्तम वालावलकर ने और तबले पर साथ दिया मुकुंद राजदेव ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली रूपक।

0: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत बस थोड़ी देर में।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाज अमीरबाई कर्नाटकी की थी। फिल्म का नाम था देवकन्या। गीतकार राम मूर्ति थे और संगीत दिया था श्याम सुंदर ने। आइए सुनते हैं फिल्म अनमोल घड़ी का गीत। आवाज मोहम्मद रफी की, गीत रचना तनवीर नकवी की और संगीत नौशाद साहब का।

ये है लल्लू, ये है ज्ञान, ये है कल्लू, ये है प्राण। तू क्यों रोता चंद्र भान, माने बेटा मेरी जान। ना हो रो रो के हलकान, तू है भारत की संतान। ले ले तू ये तीर कमान, मेरे प्यारे पहलवान। बचा

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म हम जूली से, आवाज नूरजहां की, शब्दकार अंजुम और संगीतकार हाफिज खान।

0: यह आवाज थी उमा देवी की और फिल्म का नाम था चंद्रलेखा।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।

0: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब सुनते हैं सी रामचंद्र का संगीत, पीएल संतोषी की गीत रचना, चितलकर और लता मंगेशकर की आवाजें, फिल्म का नाम सरगम।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश आवाज सुरैया की फिल्म का नाम दास्तान। इसे शकील बदायूनी ने लिखा और धुन बनाई है नौशाद साहब ने।

0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।
1: हल्दी के गुणों से भरा वीको टर्मरिक WSO क्रीम, जो आपके चेहरे के कील और मुहासे दूर करे और आपको दे प्राकृतिक सुंदरता,
2: अब सिर्फ 10 रुपए के सैशे पैक में भी।
3: वीको टर्मरिक WSO क्रीम।
4: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मशहूरों में जान तो दांतों की शान, यही है वीको की पहचान।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं इराही प्यार के। इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत। ये स्वर है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। फिल्म का नाम है सूरज। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

फिल्म सूरज का दो गाना अभी आपने मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गायफा सुना।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये दो गाना सुना। स्वर मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के थे। फिल्म का नाम था शागिर्द।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सू आयो विनायक करो ये नीति मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
5: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
4: गृह मंत्री अमित शाह ने ये विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट

0: कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
1: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1,50,96,00,000 रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारे का आकाशवाणी समाचार पटना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए एक

0: 4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गो में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दशकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थियेटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमरीका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानखथ ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ते ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है। गृहमंत्री पर

0: राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में कहा गया है कि आधुनिक राष्ट्र की असली परीक्षा ये नहीं कि उसकी सड़कें लोगों को कितनी तेजी से गंतव्य तक पहुंचाती हैं, परीक्षा ये है कि क्या उन सड़कों पर निकलने वाला हर व्यक्ति जीवित अपने घर लौट सकता है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीत कर रचा है इतिहास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, जीवन में बचपन की महत्ता सर्वोपरि होती है। हालांकि वक्त अपनी रफ्तार से कब आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन किसी भी उम्र में बचपन की यादें हमेशा हमें बहलाए रखती हैं।

बचपन की मासूमियत सारी उम्र पर भारी होती है। बेबाकी से बढ़ती जिज्ञासाओं का अंत होते होते बचपन एकदम से आगे बढ़ जाता है। हर एक मुसीबत असंख्य परेशानियों से परे अपने में

0: होता है।
1: किसी भी हाल में कहीं भी रहिए, अगर जिंदा दिल बने रहना है तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जगाए रखना होगा, ताकि जीवन का चैन और आराम हमेशा हमेशा बरकरार रहे।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला,
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम,
1: सुनना न भूलिए लघुरूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।

0: वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक, बस थोड़ी ही देर में।
2: आप सांभळी रह्या छो विविध भारती नु वडोदरा केंद्र KGIT सावली टाइम। अत्यारे 8:30 थई छे। धोरण 12 साइंस पछी एंजीनियरिंग अभ्यास माटेनो श्रेष्ठ विकल्प KJ इंस्टिट्यूट ऑफ एंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सावली।
3: श्रोता मित्रों, 93.9 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून कर्यु छे विविध भारतीनू वडोदरा केन्द्र। श्रोता मित्रों, सवारे 8:30 लोकप्रिय हिंदी फिल्मी गीतोनो कार्यक्रम चित्रलोक, जेना प्रायोजक छे
4: KJ इंस्टिट्यूट ऑफ एंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी।
3: डिप्लोमा BE तथा D2D एंजीनियरिंग ना अभ्यास माटेनो श्रेष्ठ विकल्प, जेमा मळे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी खात्री। KJIT सावली।
5: अशोका द ग्रेट एक्सक्लूसिव एथनिक एंड दुल्हा कलेक्शन, वडोदरा नो आधुनिक शोरूम, नवरंग सिनेमा रोड, रावपुरा, वडोदरा।
3: MK फर्नीचर, 5 माळ नो भव्य शोरूम, प्रतापनगर ब्रिज नीचे, वडोदरा।
6: सवारे 10 फोन इन तथा अन्य लोकप्रिय कार्यक्रमों, जिना प्रायोजक छे
5: आर्क ब्लाइंड्स, शिवाकृति बिल्डिंग, दांडिया बाजार, वडोदरा।
7: सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी, अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी,
5: ये है आर्के ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।
1: इनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप, यानी अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। आप सभी जानते हैं ना, दोस्ती सिर्फ एक रिश्ता नहीं, दिल का सबसे खूबसूरत एहसास है।

यह आवाजें थी शान के, हेमा सरदेसाई और श्रद्धा पंडित की। फिल्म का नाम था दीवानापन। गीत को लिखा था समीर ने और धुन बनाई थी आदेश श्रीवास्तव ने।

0: केके और साथियों को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था इकबाल, गीतकार थे विमल कश्यप और धुन बनाई थी केदार सरोश ने।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को

0: चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।
5: चितुलो कार्यक्रम में अब समय एक अंतराल का।
6: आप समझी रहा छो विविध भारती नू वडोदरा केंद्र वडनेर कैर ज्वेलर्स टाइम। અત્યારે સવારના 8:45 થઈ છે। વડોદરામાં સૌભાગ્યના દાગીના તો ફક્ત વડનેરકર જ્વેલર્સના જ। વડનેરકર જ્વેલર્સ, બ્રહ્મપુરી દાંડિયા બજાર, વડોદરા।
7: હર રોજ સુબહ 7 બજે સુનિયે કાર્યક્રમ ભૂલે બિસરે ગીત, જીસકે પ્રાયોજક હૈ વીકો વજ્રદંતી, મજેદાર નહીં અસરદાર ભારત કા ગમ એક્સપર્ટ।
8: બ્રો, લગ્નની શોપિંગ થઈ?
9: હા, વરસાદમાં।
8: યસ, અને એ પણ પૂજા પ્લસ સાથે ડિઝાઇનર અને સ્પેશિયલ વેડિંગ કલેક્શન પર છે અપ ટુ 50% ઓફ। વિઝિટ પૂજા પ્લસ, નવરન સિનેમા રોડ, રાવપુરા, વડોદરા।
5: વિવિધ ભારતી સે ઇસ સમય આપ સુન રહે હૈ કાર્યક્રમ ચિત્રલોક। દોસ્તો, आज जाने माने पार्श्व गायक सोनू निगम का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ये आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम खाकी, गीतकार समीर, संगीत राम संपत का।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगे इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: और आइए अब सुनते हैं अजय अतुल की संगीत निर्देशन में इरशाद कामिल की बोल। गाने वाले कलाकार सुखविंदर सिंह और दिव्या कुमार, फिल्म का नाम है 0।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच

0: अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आए हाय
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।
3: इंजीनियरिंग में पाकू करियर बनाऊ छे तो डिप्लोमा बीई के D2D माटे बेस्ट ऑप्शन छे। केजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सावली।
4: KGIT सावली आपे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी गारंटी।
3: विजिट अवर वेबसाइट kgit.org टुडे।
5: आप सांभळी रह्या छो विविध भारती नु वडोदरा केंद्र सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स टाइम। अत्यारे 9:15 छे। શુકનનું સોનું તો સારા ગણદેવીકરનું જ, સારાનું સોનું સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિનું સોનું સારા ગણદેવીકર જ્વેલર્સ દાંડિયા બજાર અને વાઘોડિયા રોડ વડોદરા।

0: લગ્નની શોપિંગ થઈ?
1: હા, વરસાદમાં.
0: યસ, અને એ પણ પૂજા પ્લસ સાથે. ડિઝાઇનર અને સ્પેશિયલ વેડિંગ કલેક્શન પર છે અપ ટુ 50% ઓફ. વિઝિટ પૂજા પ્લસ, નવરંગ સિનેમા રોડ, રાવપુરા, વડોદરા.
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है. आइए सुनते हैं रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरोला की आवाजी. फिल्म का नाम है प्यार तो होना ही था. इस गीत को समीर ने लिखा और धुन बनाई है जतिन ललित ने.

0: यह वजी रेमो फर्नांडिस और जसपिंदर नरूला की थी। फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था। जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी। उनको उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था, तो गडरणत भवन सु आयो विनायक करो ये नसीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में स्वानंद किरकिरे की रचना, आवाजें मोहित चौहान और मधुश्री की, फिल्म का नाम वेलकम टू सज्जनपुर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।
2: रात जी आ रही, दिल अंधेरा है, तू जो सजन नहीं मेरा है, मेरा है रात।
0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
3: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
3: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

मीट ब्रदर्स अनजान और अरिजीत सिंह की आवाजें थी। फिल्म का नाम था एक पहेली लीला। इस गीत को कुमार ने लिखा और धुन बनाई मीट ब्रदर्स अनजान ने।

0: चितुलू कार्यक्रम में अब वक्त है एक अंतराल का।
1: हेलो
2: राजेश जी, हूँ पुलिस स्टेशन थी बोलूं छू।
1: फरी थी
2: तमे डिजिटल अरेस्ट मा छो, बीजा रूम मा जाओ। एकला तमारा पार्सल मा थी ड्रग्स मळ्या छे, लांबा जशो।
1: 10 लाख आपी दो, बची जशो।
3: सर आटला क्या थी?
1: एक लिंक मोकली छे, हमना प्रोसेसिंग माटे
2: 2 लाख मोकलो, बाकी ना पची।
3: सर 2 लाख?
4: शू थयो पप्पा?
3: बेटा कही रिया छे के मारा पार्सल मा ड्रग्स मळ्या छे।
2: अरे
3: कापी नाख्यो।
4: पैनिक नहीं करो पप्पा, डिजिटल अरेस्ट जो कहीं च नहीं होतू, आ बधा फ्रॉड छे।
3: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, आरबीआई वगैरह ना नाम थी आवनारा साइबर अपराधियों ना फोन के वीडियो कॉल थी सावधान रहो। तेमने कोई पैसा ना मोकलो अने तरत पुलिस मा रिपोर्ट करो। जो तमे समझदारी नहीं बतावो
1: तो पैसा गुमावशो।
5: आरबीआई कहे छे,
4: जानकार बनो, सतर्क रहो।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक।

0: गीता लाल सिंह चड्ढा फिल्म का गाना, आवाजें अरिजीत सिंह, शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी की थी। गीत को अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखा था और धुन प्रीतम ने बनाई थी।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

रेखा भारद्वाज, विशाल ददलानी और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था ये जवानी है दीवानी। गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य थे और संगीत दिया था प्रीतम ने। इस गाने के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: आप समी रहा छो विविध भारती नु वडोदरा केंद्र पूजा प्लस टाइम। अत्यारे सवा ना 9:30 થઈ છે। આ વર્ષે પૂજા મોન્સૂન સેલમાં ફાયદાનો વરસાદ। મેન્સ ગાર્મેન્ટ પર 50% સુધી ડિસ્કાઉન્ટ। પૂજા પ્લસ રાવપુરા વડોદરા।
2: વિવિધ ભારતી કે પાસ હૈ બેમિસાલ હસ્તીઓ કા અનમોલ ખજાના।
3: ચંદા મામા દૂર કે હુએ પકાએ ભૂર કે।
2: જરા સુનિયે कैसे बना ये गाना।
4: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
2: संगीतकार रवि।
4: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियाँ रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के हुए पकाए दूर के।
3: आप खाए थाली में, हमने कोधे प्याली में।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस गायक की जो कभी अपनी नर्मो नाजुक आवाज से आपको लुभाते हैं। तुझे तक

जीरो से हीरो तक सफर तय करने वाले सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता अगम कुमार दिल्ली के मशहूर स्टेज गायक थे। अपने पिता की उंगली थाम सोनू ने 3 साल की नन्ही अवस्था से ही गायन का सफर शुरू कर दिया। अपने पिता के मार्गदर्शन में ही सोनू निगम ने अपने करियर के आकाश में रंग भरने शुरू किए। दिल्ली की बर्थडे पार्टियों और विवाह समारोहों में गाना गाने से लेकर हिंदी फिल्मों में सफल पार्श्व गायन तक सफर तय करना सोनू निगम के लिए काफी जटिल और संघर्षमय रहा, लेकिन उनके आत्मविश्वास, लगन और उनकी प्रतिभा ने कामयाबी का बुलंद सितारा बनाया।

सोनू निगम के बचपन के दिन काफी संघर्ष में रहे। उन्होंने 12वीं क्लास तक दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद पत्राचार माध्यम से पढ़ा और शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की तालीम ली। दिल्ली के बाद सोनू निगम मुंबई आए और शुरू हुई उनकी जद्दोजहद। शुरुआत में उन्हें कई इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्होंने कई म्यूजिकल शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। बाल कलाकार के रूप में जब उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया तो उनके पास पुरस्कारों की झड़ी लग गई।

अपने करियर की शुरुआत में सोनू निगम मोहम्मद रफी की आवाज में गाने गाया करते थे। धीरे धीरे वे मोहम्मद रफी की आवाज बन गए थे। टी सीरीज की रफी की यादें नामक एल्बम के लिए सोनू निगम ने मोहम्मद रफी के गीत गाना शुरू किया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। बतौर पार्श्व गायक सोनू ने अपना पहला गीत गाया फिल्म आजा मेरी जान के लिए। उन्हीं दिनों वे रेडियो के लिए विज्ञापन बनाने लगे। साथ ही 1995 में एक टेलीविजन चैनल के लिए मशहूर कार्यक्रम

हम सारे गामा का संचालन भी शुरू कर दिया। पलक झपकते ही ये कार्यक्रम कामयाबी के परचम लहराने लगा। इसके बाद सोनू निगम को फिल्म बेवफा सनम के लिए गाने का मौका मिला। गाना था

सोनू निगम की सफलता का सितारा जिस फिल्म से चमका वो फिल्म थी बॉर्डर। अनु मलिक के संगीत से सजी इस फिल्म का सोनू निगम का गाया गीत हिट हुआ और लोगों के होठों पर सज गया।

1999 में सोनू निगम का नॉन फिल्मी गीतों का एल्बम दीवाना रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जलवा दिखाया। मोहब्बत करने वाले जोड़े अपनी मोहब्बत का इजहार दीवाना एल्बम के गीतों से आज भी करते हैं।

नदीम श्रवण के संगीत से सजी फिल्म परदेश का सोनू निगम का ये गाना खूब मकबूल हुआ। ये दिल दीवाना गाने ने लोगों को दीवाना बना दिया।

इसके बाद मोहम्मद रफी की परछाई कहलाने का फैसला सोनू निगम ने बदल दिया और अपनी एक अलग खास पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी हर कोशिश कामयाब रही। उनके गायन का उच्च शिखर आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया।

सोनू निगम ने कई भाषाओं में गाने गाए, मसलन कन्नड़, असमिया, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम वगैरह वगैरह। कई भाषाओं के साथ ही साथ हर तरह के गाने उन्होंने गाए। हर मिजाज का गाना दिल की धड़कनों तक उतरा। चाहे खुशी भरा पार्टी गीत हो, प्रणय निवेदन करता प्रेम गीत हो, उदास गीत हो या दर्द से रुला देने वाला गीत हो, हर गीत में उनकी आवाज बेमिसाल होती है। दिल को चीर देने वाला गम के सागर में डूबा, फिल्म के दृश्य को आंखों के सामने ला, आंसुओं से सराबोर करता ये गीत सुनिए।

मजबूरियों से हारो मत, उनका डट कर मुकाबला करो। इस फलसफे के साथ सोनू निगम ने करियर के कई आयाम तय किए। शास्त्रीय संगीत का खूब रियाज किया उन्होंने, ये रियाज उनके गायन में खूब झलकता है। अभिनय में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया। फिल्म बेताब में वे बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर नजर आए थे। बाद में जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में नजर आए। फिलहाल सुना जाए ये गाना।

सोनू निगम ने कई म्यूजिकल शो में जज बनकर और होस्ट बनकर छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनके स्टेज शोज खूब हिट होते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। सोनू निगम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालें। फिल्म कल हो न हो इस गाने के लिए सोनू निगम को मिला सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक सोनू निगम पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

ज्ञान को सोने नहीं देता है। नई टेक्नोलॉजी की मच्छर जाली के लिए संपर्क करें 45 वर्ष से आपकी सेवा में उपस्थित आरके ब्लाइंड्स डांडिया बाजार 9825027525। सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी, ये है आरके ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

93.9 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का वडोदरा केंद्र, और आज फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त धवल परमार। दोस्तों, आज 30 जुलाई 2026, आज का दिन एक बेहद संवेदनशील, गंभीर और महत्वपूर्ण

पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विषय पर विचार करने और संकल्प लेने का दिन है। आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है विश्व मानव तस्करी के खिलाफ दिवस। दोस्तों, मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक ऐसा अभिशाप है जो इंसानियत के माथे पर कलंक है। झूठे वादों, लाचारी और गरीबी का फायदा उठाकर मासूम बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को उनकी आजादी से वंचित कर दिया जाता है। आज का ये दिन हमें याद दिलाता है कि इस सामाजिक अपराध के खिलाफ हम सबको एक साथ खड़ा होना होगा। आइए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं 1958 में रिलीज हुई फिल्म फिर सुबह होगी के इस गीत के साथ। साहिल लुधियानवी की इस शब्द रचना को सुर से सजाया है मुकेश और आशा भोसले ने और संगीत खयाम का।

वो सुबह कभी तो आएगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म फिर सुबह होगी का ये खूबसूरत नगमा। आप सुन रहे हैं 93.9 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती वडोदरा, और मैं हूं आपका दोस्त धवल परमार। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 30 जुलाई को ये दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी के शिकार पीड़ितों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। तस्करी सिर्फ सीमाओं के पार ही नहीं होती, बल्कि कई बार हमारे ही आसपास बस्तियों और शहरों में छिपकर ये काला कारोबार चलता है। जब किसी मासूम बच्चे या महिला को उनके परिवार से जबरन दूर किया जाता है तो उस बिछड़ने का दर्द असहनीय होता है। आइए फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। प्यासा फिल्म के इस गीत के साथ साहिल लुधियानवी की इस शब्द रचना को संगीत से सजाया है एच डी बर्मन ने, और आवाज मोहम्मद रफी की।

वाकई दोस्तों, जब मासूमियत पर अत्याचार होता है तो पूरी इंसानियत रो पड़ती है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का ये विशेष कार्यक्रम। दोस्तों, मानव तस्करी से लड़ने का सबसे पहला कदम है जागरूकता और सजागता।

अक्सर दूर दराज के इलाकों से लोगों को अच्छी नौकरी, बड़े शहर में पढ़ाई या बेहतर जिंदगी का झांसा देकर फंसाया जाता है। हमें अपने आसपास के लोगों को यह समझाना होगा कि किसी भी अनजान एजेंट या संदिग्ध ऑफर पर बिना पूरी जांच पड़ताल किए भरोसा न करें। अगर आप कहीं भी बाल श्रम, जबरन मजदूरी या किसी संदिग्ध गतिविधि को देखें तो चुप ना रहें। तुरंत राष्ट्रीय चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 में फिर से दोहराता हूं, राष्ट्रीय चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 या पुलिस को तुरंत सूचना दें। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं कॉल गर्ल फिल्म से अगले गीत के साथ। नश्क लालपुरी की इस शब्द रचना को आवाज दी है लता मंगेशकर ने और संगीत सपन जगमोहन का।

दोस्तों ये गीत सीधे दिल में उतर गया। दोस्तों मानव तस्करी के शिकार लोगों को केवल इस दलदल से निकालना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान देना, उनका पुनर्वसन यानी कि रिहेबिलिटेशन करना और उनके मानसिक रूप से मजबूत बनाना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए सरकार के साथ साथ कई गैर सरकारी संगठन एनजीओस और नागरिक समाज दिन रात काम कर रहे हैं। जब एक पीड़ित को न्याय, जीवन और आजादी मिलती है तो उसके चेहरे की खुशी कहीं और ही होती है, और वही खुशी समाज की असली जीत होती है।

आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं साधना फिल्म के इस गीत के साथ। साहिल लुधियानवी के शब्द रचना को संगीत दिया है एन दत्ता ने और स्वर लता मंगेशकर का।

जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुत

दोस्तों आप सुन रहे हैं विविध भारती का वडोदरा केंद्र विशेष फिल्म संगीत में। इस कार्यक्रम में मैं आपके साथ हूं, आपका दोस्त धवल परमार। दोस्तों समाज से कई बुराई को उखाड़ फेंकने के लिए कानून तो सख्त है, लेकिन कानून के साथ साथ हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है। हमें अपने बच्चों को गुड टच, बैड टच और अनजान लोगों से सावधान रहने की शिक्षा भी देनी होगी। सोशल मीडिया के इस दौर में साइबर तस्करी का खतरा भी बढ़ता है, जहां बच्चों को ऑनलाइन जाल में फंसाया जाता है, इसलिए डिजिटल सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। दोस्तों आइए कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं, मोहित चौहान के स्वर में रंग दे बसंती फिल्म से। प्रसून जोशी की इस शब्द रचना को संगीत से सजाया है ए आर रहमान ने।

किसी पहल, किसी का खोया हुआ बचपन या किसी की जिंदगी वापस लौटा सकती है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है आज के इस खास और विचारशील सफर से विदा लेने का। उम्मीद है कि आज की ये प्रस्तुति आपको जागरूक करने के साथ साथ एक नई सोच देने में सफल रही होगी। चलते चलते इस उम्मीद के साथ कि हर इंसान को आजाद फिजा में सांस लेने का हक मिले, सुनते हैं आज का फिल्म संगीत का ये अंतिम और बेहद सुरीला गीत। तारे जमीन पर फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत रमन महादेव का स्वर, प्रसून जोशी की शब्द रचना और संगीत शंकर एहसान लोहिया का।

वाकई जिंदगी में हर बुराई के खिलाफ लड़ना ही असली जंग है। 93.9 मेगाहर्ट्ज पर यह है विविध भारती का वडोदरा केंद्र। आज विश्व मानव तस्करी के खिलाफ दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि हम अपने आसपास एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाएंगे जहां कोई भी मासूम खौफ में ना रहे। सजग नागरिक बनिए, क्योंकि आपकी एक छोटी

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का विशेष फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा विविध भारती के वडोदरा केंद्र से।

0: जरूर सुनिए पिटारा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं AISSMS पुणे, अ प्रीमियम हेरिटेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।
1: पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का वडोदरा केंद्र, और आज नगमे हमारी पसंद के इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त धवल परमार। दोस्तों, आज 30 जुलाई 2026, आज का दिन दिल के सबसे करीब रहने वाले रिश्ते यानी कि दोस्ती को भी समर्पित।

आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस यानी के इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। कहते हैं कि रिश्ते ऊपर वाला बनाता है, लेकिन दोस्त हम खुद चुनते हैं। एक सच्चा दोस्त वो होता है जो बिना कुछ कहे हमारी खामोशी पढ़ लेता है, जो हमारी खुशियों में झूमता है और मुश्किल वक्त में बिना किसी शर्त के साथ खड़ा रहता है। तो चलिए आज की इस सुहाने मौसम में दोस्ती के इस खूबसूरत रिश्ते का जश्न मनाते हैं और कार्यक्रम का आगाज करते हैं दोस्ती के इस तरह के साथ। कार्यक्रम का पहला गीत है कायपोचे फिल्म से अमित त्रिवेदी के स्वर में स्वानंद किरकिरे की ये शब्द रचना को संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

वाकई दोस्तों, जब दोस्त साथ हो तो कोई भी मान जाए, चाहे कितना भी उलझा हो, सुलझ ही जाता है। ये गाना सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों के सामने पुराने दोस्तों के चेहरे आ जाते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती का वडोदरा केंद्र और मैं हूं आपका दोस्त धवल परमार। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने 2011 में आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्र

विजेता दिवस घोषित किया था। एक साल इसका मकसद सिर्फ दो इंसानों के बीच की दोस्ती को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि विभिन्न देशों, संस्कृतियों और समुदायों के बीच शांति, सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देना भी है। क्योंकि जब दुनिया में दोस्ती का भाव होगा, तभी तो शांति और खुशहाली होगी, है ना? आइए दोस्ती की इस अटूट डोर को महसूस करते हैं इस गीत के साथ। शान शांतनु मोहित्रा के स्वर में सुनते हैं थ्री इडियट्स फिल्म का ये गाना। स्वानंद किरकिरे की शब्द रचना को संगीत से सजाया है शांतनु मोहित्रा ने।

दोस्तों, ये गीत सुनकर आपके किसी एक दोस्त की याद जरूर आई होगी और याद है हमेशा चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान छोड़ जाती है। आप सुन रहे हैं विविध भारती का वडोदरा केंद्र और मैं हूं आपका दोस्त धवल परमार। दोस्तों, दोस्ती का एक रूप वो भी होता है जहां दो बिल्कुल अलग मिजाज के लोग मिलते हैं और एक दूसरे की ढाल बन जाते हैं। समय बदलता है, रास्ते बदलते हैं, लेकिन जो एहसास दिल में बस जाता है वो कभी नहीं बदलता। आइए अब आपको ले चलते हैं उस सुहानी दुनिया में जहां दोस्ती की सादगी और मिठास घुलता ये नगमा आपका इंतजार कर रहा है। आइए सुनते हैं रॉय फिल्म से केके की आवाज में संदीप नाथ की ये शब्द रचना, संगीत अंकित तिवारी का।

क्या बात है, गानों का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। दोस्तों, जब हम वडोदरा की बात करते हैं तो यहाँ की सयाजी बाग की सैर, एमएस यूनिवर्सिटी के कैंपस की वो बात है और दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर बीता समय, ये सब दोस्ती के रंग में और भी हसीन हो जाता है। दोस्तों, पिकनिक हो या रोड ट्रिप, अगर जिगरी यार साथ हो तो हर रास्ता यादगार बन जाता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गाना। अरिजीत सिंह के स्वर में छिछोरे फिल्म के इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

दोस्तों, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। आप सुन रहे हैं 93.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती वडोदरा से कार्यक्रम नगमे हमारी पसंद के। दोस्तों, दोस्ती हमें जीना सिखाती है, मुश्किलों से लड़ना सिखाती है और जिंदगी को एक उत्सव बना देती है। आज इस खास मौके पर अपने उन सभी दोस्तों को शुक्रिया कहिए जिन्होंने हर मोड़ पर आपका साथ दिया, हर मोड़ पर आपका हाथ थामे रखा। दोस्तों, संगीत की इस मस्ती के बाद अब वक्त आ चला है आज के इस सुहाने सफर को विश्राम देने का। उम्मीद है कि आज का ये फ्रेंडशिप स्पेशल शो आपके दिल को छू गया होगा और अपने अपने पुराने दोस्तों को याद जरूर किया होगा। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर विदा लेने से पहले सुनिए दोस्ती का ये खूबसूरत तराना। कार्यक्रम का अंतिम गीत है सोनू के टीटो की स्वीटी के फिल्म से ये गाना, अरिजीत सिंह का स्वर में, कुमार की ये रचना और संगीत रोचक कोहली का।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का नगमे हमारी पसंद के कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। दोस्तों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा और आपके कोई अन्य सुझाव हो तो हमें जरूर लिखिए। हमारा पता है, नगमे हमारी पसंद के कार्यक्रम विभाग, आकाशवाणी रेडियो स्टेशन, वकरपुरा रोड, वडोदरा, गुजरात, पिन कोड 390009। फिर से सुनिए, पिन कोड है हमारा 390009। आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। अब आपके इस दोस्त धवल परमार को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे कुछ और नगमों के साथ। तब तक सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती। दोस्तों, ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा विविध भारती के वडोदरा केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।

0: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। राज्यसभा आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
2: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकेपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 11 बजे तक पटना के बांकेपुर विधानसभा सीट पर 11.5%, गुजरात के मंजलपुर सीट पर 14.27% और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32.53% मतदान की खबर है। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले में 2 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन की सेना के अनुसार कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में कई हमले किए गए। कीव के मेयर विताली क्लट्सको ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक दिन पहले ही चेतावनी दी थी कि रूस यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला कर सकता है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। भारत के वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। रहाणे ने भारत के लिए अपना आखिरी मैच वर्ष 2023 में वेस्टइंडीज दौरे के दौरान टेस्ट टीम में खेला था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।
4: इंजीनियरिंग में पाकू करियर बनाव छे तो डिप्लोमा बीई के D2D माटे बेस्ट ऑप्शन छे। KJ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सावली।
5: KJIT सावली आपे छे 100% जॉब प्लेसमेंट नी गारंटी।
4: विजिट अवर वेबसाइट kjit.org टुडे।
6: ગ્રીશભાઈ ગણદેવીકર જ્વેલર્સ શુભ અવસરોમાં સોનાની ખરીદી માટે વિશ્વાસપાત્ર નામ ગ્રીશભાઈ ગણદેવીકર જ્વેલર્સ, જેતલપુર બ્રિજ પાસે અલકાપુરી, વડોદરા।
7: જરૂર સુનિયે પિટારા ઇસ કાર્યક્રમ કે પ્રાયોજક હૈ AISSMS પુણે, અ પ્રીમિયમ હેરિટેજ ગ્રુપ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુટ્સ।

आइए सुने यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज सोनू निगम को हम दे रहे हैं जन्मदिन की बधाइयां। तो कुछ ऐसे गाने जो सोनू निगम के बड़े सुहाने से गाने हैं जो हमारे इस सफर को बनाएंगे सुनहरा।

0: दिल से फिल्म का ये गीत आपने सुना।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बॉर्डर फिल्म का ये गीत जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक की तर्ज थी, रूप कुमार राठौर, सोनू निगम और साथियों की आवाजें थीं। आज है सोनू निगम का जन्मदिन और विविध भारती पर यादों की महफिल कार्यक्रम में उनके गाने हम आपको सुनवा रहे हैं।

0: सम्मानी फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सू आयो विनायक करो ये नीति मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
3: परदेश फिल्म का गाना सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन। आनंद बख्शी, नदीम शवण।

परदेस के बाद अब थ्री इडियट्स फिल्म का गाना सुनो निगम शान और स्वानंद किरकिरे। गीत स्वानंद किरकिरे, संगीत शांतनु मोहित्रा। दिन के 12:39 और विविध भारती पर ऑल इज वेल।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
5: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हाय हाय।
0: सुनो निगम और अनुराधा पौडवाल फिल्म का नाम है तुम बिन।

0: वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आंखें।
0: आंखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: दिल चाहता है फिल्म का ये गीत आपने सुना, और इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की आज की इबारत हमने विविध भारती के सोशल मीडिया पेज पर यानी फेसबुक पर पोस्ट कर दी है और आप सभी ने पढ़ भी ली है। ये इबारत है, कुछ दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं होते, वो राह भी दिखाते हैं। उस दिन राह दिखाने वाले एक दोस्त ने कहा था, उतना ही उपकार समझ तू जितना साथ निभा दे। बात इशारों वाली थी पर फौरन समझ में आ गई थी। कुछ बहारें बीती और इस एहसास को जीना भी पड़ गया। एक सुरमई शाम थी, उस दिन वो आखिरी बार मिली। वो जता गई कि दुनिया परछाइयों की है, भरी भीड़ में खाली तन्हाइयों की है। तब से आंखें आंखें नहीं रह गईं, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी बन गईं। प्यार करने वाले तो बद्दुआ भी नहीं दे सकते, जैसे बख्शी साहब ने लिखा था, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। जिस दिल में बसा होता है प्यार वो यही कहता है, चांद धुंधला सही ये गम नहीं है मुझे, तेरी रातों पे रातों का साया ना हो। शाम की तन्हाइयां अक्सर उसकी याद दिलाती हैं और तब होता है एहसास, मैं शायद एक ख्वाब था जिसे उसने अपनाया ही नहीं। एक छोटी सी कहानी हमने पोस्ट की आज की इबारत के तौर पर। इस कहानी से आपको ये समझ में आता है कि दो लोगों का साथ निभ नहीं पाया। एक के हिस्से में उदासी आई, शायद दूसरे के हिस्से में भी आई ही होगी। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि आज की इबारत बता देती है कि गाने कौन से शामिल होने वाले हैं। बाकायदा दरअसल गानों की पंक्तियां इस कहानी की पंक्तियां जो बन गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर इस गाने के साथ। क्या तो शानदार ओपनिंग म्यूजिक है इस गाने का जो मेरी आवाज के पीछे आपको सुनाई दे रहा है। किस फिल्म का है गाना ये तो जरूर बताइएगा, लेकिन साथ में ये भी बताइए दो बातें। एक तो ये कि किस जगह की शाम आपको बहुत ज्यादा पसंद है। लोग शामें अवध और सुबह बनारस की बात करते हैं, आपके लिए किस जगह की शाम मायने रखती है। और दूसरी बात, क्या जिंदगी में आपके साथ भी ऐसा हुआ कि किसी एक मोड़ पर किसी का साथ छूट गया और रह गई केवल उदासी।

और जब शाम की बात चली तो बहुत सारे श्रोताओं की बातें आई हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो हर शाम दिल लुभाने वाली होती है, लेकिन पुरी की जो शाम है, पुरी के समुद्र तट की शाम, सूर्यास्त का नारंगी रंग बहुत ही मनमोह लेता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे हमारे शहर उज्जैन की शाम पसंद है, क्योंकि 36 साल की सेवा के बाद मुझे अपने शहर वापस लौटने का मौका मिला है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती हैं कि कोच्चि की शाम पसंद है, हमारी छत से हम सूर्यास्त देख सकते थे, सूरज समुद्र के नीचे जा रहा था, धीरे धीरे खूबसूरत प्रकाश फीका हो रहा था। इसके अलावा लेकिन फिल्म का ये गाना है, इसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं कि गुलजार के ये बोल, सुरेश वाडकर की आवाज, हृदयनाथ मंगेशकर का ये संगीत है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई हमारे लखनऊ की शाम का कोई जवाब नहीं है। एक और श्रोता है जो ये लिखती हैं कि जिसके साथ शाम होती है वो जब भी दूर होकर भी दूर जाकर भी दूर नहीं होता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे कक्षा 8वीं की शाम बहुत अच्छी लगती थी, जब मैं एनसीसी के कैंप में भोपाल गया था और कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे। इसके अलावा एक श्रोता की बात यह है कि उन्हें सुबह और शाम दोनों ही अपने शहर की अच्छी लगती हैं, यानी उनके शहर की ही सुबह और उनके शहर की ही शाम उन्हें अच्छी लगती है, घर पर अच्छा लगता है। एक श्रोता और हैं जिनका कहना है कि समंदर के किनारे जो शाम बीते, डूबता सूरज क्षितिज को सुनहरा करता है, वो देखना बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो हर शाम मुझे अधूरी सी लगती है। और इसके अलावा लखनऊ की शाम भूलने वाली नहीं है, ये बात भी एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं की बातों

कि बीच में एक बात ये भी है कि एक श्रोता अपने दफ्तर से कार्यक्रम सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का आनंद भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए, जो कि आज की इस इबारत का हिस्सा था जिसे हमने गानों के बोलों के इशारों से सजाया था, और ये जो गाना है ये कहता है कि थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी, यानी जिंदगी की उदासी को और आंखों के भीग जाने के एहसास को ये गाना बयां करता है। पिछली बार हाल ही में किस बात पर आपकी आंखें भीग गई थी, ये बात बताइएगा। और साथ में ये भी कि इस गाने में ये जो नाजुक आवाज है, दिल में उतर जाने वाली आवाज, ये किस गायिका की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि पिछली बार तब बहुत रोना आया था जब मैं भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर आर्मी की भर्ती की परीक्षा देने गया था और केवल 20 सेकंड से मैं रह गया था। एक और श्रोता है जो कहती है कि शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, जुगल हंसराज वाली फिल्म मासूम और गायिका आरती मुखर्जी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उन्हें आरती मुखर्जी के साथ कोलकाता में चाय पीने का अवसर प्राप्त हुआ था, ये उनके लिए बहुत ही यादगार लम्हा है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि कुछ लोग जो अब साथ नहीं हैं उनकी याद में आंखें नम हो जाती हैं। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि मैं जब भी फूलों का तारों का गीत सुनती हूं तो अपने भाई को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। बचपन की याद दिलाने वाली फेसबुक पोस्ट देखकर आंखें नम हो जाती हैं कि कितनी निस्वार्थ दोस्ती थी, आपस में खेलना, झगड़ना, फिर सुलह कर लेना। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनका ये कहना है कि जिंदगी कितनी अजीब है, सब कुछ इतना मुकम्मल लगता है कि इंसान वक्त को वहीं रोक देना चाहता है, लेकिन शाम ढलती है वो इंसान विदा हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा फैर जाता है। एक और श्रोता है कहते हैं पूछिए आज हम आ गए मैदान में। बिल्कुल जी, अब तो कठिन से कठिन सवाल पूछेंगे, आइए मैदान में। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने 1983 में आई थी फिल्म मासूम ये लिखा। एक और श्रोता का कहना है कि माँ का साथ कुछ साल पहले छूटा, दुनिया में वीरानी छा गई, एक खालीपन है। शाम की चाय अब भी पीती हूँ पर माँ के साथ शाम की चाय की बात कुछ और थी। अब घर का वो कमरा जहाँ से माँ की रौनकें थीं, दर्द भरा सन्नाटा पसरा रहता है। किसी का साथ जब छूट जाता है तो कितना बदल जाता है जीवन। एक और श्रोता लिखते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा थी तो मन में ख्याल आया कि सबसे पहले गुरु तो माँ पापा होते हैं, बस सोचते सोचते आंखें भर आईं। तमाम श्रोताओं के इस तरह के कमेंट कुछ जज्बाती कर देने वाले, कुछ अपने दिल की बात कहने वाले, शुक्रिया आप सभी का। और पूरी इबारत की एक तरह से डोर पकड़ के जो अगला गाना हम आज के हार में मोती की तरह पिरो रहे हैं वो मुकेश की आवाज़ वाला ये गाना है। फिल्म का नाम और गीतकार का नाम बताइएगा।

0: भाई ये गाना कितने जल्दी खत्म हो गया ऐसा लगता है। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मेरे होंठों पर एक ही गीत जहन में आ रहा है, न फनकार कोई तुझसा तेरे बाद आया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संगीत के प्रति मेरे लगाव की शुरुआत मोहम्मद रफी से हुई है। मोहम्मद रफी सिर्फ गायक नहीं बल्कि भारतीय संगीत की वो रूह हैं जिसने करोड़ों दिलों को धड़कना सिखाया। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि उपकार का जो गाना है, सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं और आज सुबह से बारिश का लुत्फ हम ले रहे हैं। और एक श्रोता का कहना है कि लता जी का तार सप्तक स्वर अंतरे में बहुत भाता है इस गाने में। गुलशन बाबरा का लिखा गीत, कल्याण जानन जी का संगीत, ये भी एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरे देश की धरती टाइमलेस गाना है और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना यही है। और उसके अलावा कस्मे वादे प्यार वफा। एक और श्रोता है कहते हैं कि आज से सावन शुरू हो गया है, कई दिनों से बहुत उमस वाली गर्मी थी और इस समय तेज बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक श्रोता कहती हैं कि किसी अपने के लिए की गई वो पवित्र दुआ है जहां खुद को पीछे छोड़कर केवल सामने वाले के जीवन में कोई उजाला और मुस्कान देखना चाहता है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि शायद इबारत देखने के बाद यही गीत पूरा हमारे जहन में चल रहा था और इस गाने का इंतजार वो कर रही थी। इंतजार एक और कार्यक्रम का कीजिएगा जिसकी सूचना आप देते हैं, फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय
0: भाई, विविध भारती पर सुरीला सफर चल रहा है और हमारे श्रोता किस तरह से अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आज सोनू निगम का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देना चाहते हैं। बिल्कुल दीजिए भाई, और हमने तो इससे पहले वाले यादों की महफिल वाले कार्यक्रम में बाकायदा उन्हें बधाइयां दी हैं और फनकार आज के फनकार कार्यक्रम का जिक्र भी उन्होंने किया है। और बहुत सारे श्रोता मोहम्मद रफी साहब के बारे में अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सुबह से एक गाना जहन पर चढ़ा हुआ है, वो है स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि सुबह से हमारे जहन पर छाया हुआ है वो गाना चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि टेलीपैथी हो गई हर खुशी हो वहां हमारे जबान पर सुबह से चढ़ा हुआ है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये दिल दीवाना है ये हमारे जहन पर चढ़ा हुआ है। एक श्रोता के जहन पर चढ़ा हुआ है मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया। और इस तरह से सभी अपने अपने गाने बता रहे हैं और आज की इबारत का अगला गाना ये, फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आज की शाम सुनहरी बनाने के लिए आप क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं।

इस गाने को सुनकर एक आह निकल जाती है। आह फिल्म का गाना जिसको सुनकर आह निकल जाती है। एक श्रोता कहते हैं कि भाई कजिन को पढ़ाना है, शाम को मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शाम का आनंद लेंगे। एक और श्रोता का कहना है कि शाम की तन्हाई को और गहरा बनाने के लिए समुन्दर का किनारा ही बढ़िया होता है। और शैलेंद्र के इस गाने पर एक श्रोता जो है बहुत भावुक हो रहे हैं। एक और श्रोता है कहते हैं कि मैंने 6 गाने आज अंदाजा लगाया था, इन 6 गानों का गेस किए थे, 6 गाने शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 गानों की लिस्ट में ये 3रा गाना है जो शामिल हुआ है। एक और श्रोता है जिनके शहर में बारिश की सूचना है, इसलिए वो कहीं बाहर नहीं जाने वाली। और जब बारिश होती है और जब कहीं जाने को नहीं होता तो किचन में एक बहुत हल्की चीज बनती है जो तेल के ऊपर तैर जाती है। वो हल्की चीज कौन सी है भाई, जो बारिश के मौसम में हमें जरूर खाना पसंद होता है? जरा बताइएगा। वो हल्की चीजें जो हैं जीवन में बनी रहें, उनकी महक बनी रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और सुबह से ही हम सावन के गाने गुनगुना रहे हैं। एक और श्रोता है जो जबलपुर में और कहते हैं कि आज हमारे शहर में मोहम्मद रफी साहब की याद में एक कार्यक्रम है और आज शाम को वो वहां जाने वाले हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैंने जैसे ही सोचा मेरी मम्मी का ये फेवरेट गाना बजने लगा और मैं साथ में गुनगुनाने लगी। आज शाम को सभी दोस्त मिल रहे हैं और तालाब में बोटिंग करने जा रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है और बाकायदा बोटिंग का मौसम है। देखिए भाई कितने सारे श्रोताओं के जो शाम के प्लान्स हैं वो हमने उजागर कर दिए आज के इस कार्यक्रम के जरिए। तो बताइएगा कि आपका आज की शाम का क्या प्लान है। तब तक ये गाना जो जिंदगी दुनिया और रिश्तों की हकीकत को उजागर करता है। बताइएगा ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे आज आपकी बात नहीं हो रही है।

बहुत श्रोताओं के कमेंट तना दन चले आ रहे हैं। श्रोता लिखती हैं कि उदासी गहरी होती है तो दोस्तों से बात करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो बस उस दिन एक्टिव होता है जब किसी का जन्मदिन हो। मैंने ऐसे ही एक दिन कहा कि सब कहाँ रहते हो, तो बड़ा ही रूखा सा जवाब आया कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आप मेरे फेवरेट एंकर बन गए हैं। रफी साहब के बारे में क्या कहूं, वो मेरे फेवरेट थे, फेवरेट हैं और फेवरेट रहेंगे। बहुत ही सही, उन्होंने कहा कि अगर एक भी दिन रफी साहब की आवाज ना सुने तो बहुत खाली सा लगता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती हैं कि जरीना वहाब पर फिल्माया गया ये गाना है सितारा फिल्म का। एक और श्रोता है कहते हैं कि दोस्त होने का क्या फायदा, जिससे बात ना हो। दोस्त तो वो होता है जो झगड़ा करने के बाद आकर बोले कि भाई क्या हाल चाल है, चलो बड़े तालाब में घूम कर आते हैं। क्या बात है, प्यारी बात कही है। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि सितारा फिल्म का ये गाना बहुत कम सुनाई देता है, आज आपने सुनवाया, शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज आपने वो बातें छोड़ दी हैं जो दोस्ती की अनगिनत यादें लेकर आती हैं और अंत में आंखें भिगो देती हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आपने

जो बहुत ही हल्की सी चीज का जिक्र किया है वो पकौड़ी है जो कढ़ाई में तेल के ऊपर तैर जाती है। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जिनका आज पकौड़ी खाने का प्लान है, तो जरा ये बताइए बहुत सारी महिलाएं कि भाई पकौड़ी आप ही बनाती हैं या अपने पति से भी बनवाती हैं? किन किन घरों में पति पकौड़ी बनाते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है? और अब वो गाना आ रहा है जो उदास कर देने वाला है। मुकेश की आवाज में उदास गाने आपको पसंद होते हैं या फिर रोमांटिक गाने, बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना ये भी बताइएगा।

कार्यक्रम के तकरीबन आखिरी दौर में हम आ पहुंचे हैं। हिमालय की गोद में फिल्म का ये गाना बजा। बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि कढ़ी बनने से पहले ही सारे घर वाले पकौड़े खा लेते हैं और मैं कढ़ी कैंसिल कर देती हूं। आपके घर में भी क्या ऐसा होता है? एक और श्रोता लिखते हैं।

बनारस और बारिश पकौड़े का सवाल ही नहीं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुकेश की दर्द भरी आवाज उन्हें ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बरसात में पकौड़ी मैं बनाती हूँ, मेरे पति चाय भी नहीं बनाते तो पकौड़ी क्या खाक बनाएंगे। अरे रे रे रे, ये तो बड़ी बुरी बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े कढ़ाई में तो हल्के होते हैं लेकिन खाने के बाद सेहत के लिए भारी हो जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ चीजें तो हम अपनी श्रीमती जी से ही बनवाते हैं क्योंकि उनके हाथ की स्वादिष्ट होती है, तैयारी भले मुझे करनी पड़ती है। और इसके अलावा भाई आज तो पूरा पकौड़ी पुराण शुरू हो गया है। बहुत सारी महिलाएं ये बता रही हैं कि उनके पति को पकौड़े बनाने नहीं आते। अब जरा सोचिए कि ये कितनी गलत बात है। और सीख लीजिए, आज ही के आज सीख लीजिए, आप लोग जिम्मेदारी लीजिए कि आज ही आप सिखाएंगी। और अगला गाना आ रहा है, फिल्म का नाम तो कश्मीर की कली है पर इस गाने के गीतकार कौन है और आप कश्मीर कब गए थे और कश्मीर जाने की सुनहरी याद क्या है बताइए।

एक श्रोता लिखती है कि कश्मीर से याद आया कि हिमाचल प्रदेश में एक गांव का नाम कश्मीर है। अभी कुछ दिन पहले वहां गए थे ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट। कश्मीर घूमने के इरादे से गूगल मैप के जरिए हिमाचल से इस कश्मीर के गांव में पहुंच गए थे। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि वो 2015 में कश्मीर गए थे और बहुत ही सुनहरी यादें हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि कल्पना से भरी हुई अच्छी मसालेदार पकौड़ी विविध भारती पर सुनने को मिली। और एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि जब भी कश्मीर का ख्याल आया, घर में ही कश्मीर का माहौल पाया, पत्नी के हाथों से बने चाय पकौड़े टीवी ने ही कश्मीर से रूबरू करवाया। भाई वाह क्या कहने हैं। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर में 3 साल तक रहे हैं और वहाँ कुछ पढ़ाई की है, युवा उम्र की यादें, क्या बात है। एक और श्रोता हैं जो ये कहती हैं कि 2014 में अमरनाथ गई थी और हम वहाँ कश्मीर गए थे और बहुत ही अच्छा लगा था। एक और श्रोता हैं वो कहते हैं कि भाई पकोड़े नहीं तल सकते तो क्या हुआ, प्याज आलू काटने में और

छीलने में मदद तो कर सकते हैं ना, ये भी कम तो नहीं। बहुत सही बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भाई कश्मीर की कली बहुत शानदार, आज का कार्यक्रम बहुत शानदार। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें पकौड़े खाने से मना किया है और आप पकौड़े का नाम ले रहे हैं तो मुंह में पानी आ गया है। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े वाली कढ़ी बनती है हमारे घर में और सभी सफा चट कर जाते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं रोज अपने घर में काम करता हूं और महिलाओं का सहयोग करता हूं, खाना भी बनाता हूं, कोई व्यंजन ऐसा नहीं है जो मैं नहीं बना सकता। पकौड़ी क्या चीज है, आप पधारिए, पनीर के पकौड़े बनाए जाएंगे। भाई वाह क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि भाई आपकी बातों के बाद पकौड़े खाने का मेरा मन कर रहा है और वो भी भुट्टे के पकौड़े। भाई आज ना ये कार्यक्रम सुरीला सफर जो है वो गानों से ज्यादा तो पकौड़ों की बातों का सफर हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े और पति जी नहीं, वो सिर्फ जायका लेते हैं। इसके अलावा और भी श्रोताओं ने ये सब जिक्र किया है, बहुत शुक्रिया। देखिए जरा सी बात पर कितनी लंबी दास्तान हो गई और कितने सारे श्रोताओं ने कितनी सारी अपनी बातें कहीं। यही तो है विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम का मजा कि जिसमें आप हमारे हम सफर बनते हैं और भाई तमाम बातें होती हैं और जिंदगी के अलग अलग मुद्दों पर आप अपनी बातें शेयर करते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज ताकत का इंजेक्शन लिया, सुरीला सफर कार्यक्रम सुना, परेशानी दूर हो गई, बिस्किट चाय के साथ इस वक्त बिस्किट चाय कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूं। मेरे घर में कल भाभी जी ने पकौड़े छाने थे। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आप ये कार्यक्रम करते हैं तो मैं कभी मिस नहीं करती। एक और श्रोता है जो कहते हैं कम वक्त बारिश नहीं हो रही है, पकौड़े खाक बनाए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर नहीं गए लेकिन तस्वीरें देखकर संतोष कर लेते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में इस तरह से साथ निभाने के लिए। आप बारिश का इंतजार करें और खूब पकौड़े बनाएं, मजे से खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। जिंदगी की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहें विविध भारती के संग बने रहें। सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ आपका ये दोस्त यूनुस खान था। इजाजत, नमस्ते।

दोस्तों, जीवन में बचपन की महत्ता सर्वोपरि होती है। हालांकि वक्त अपनी रफ्तार से कब आगे बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन किसी भी उम्र में बचपन की यादें हमेशा हमें बहलाए रखती हैं।

बचपन की मासूमियत सारी उम्र पर भारी होती है। बेबाकी से बढ़ती जिज्ञासाओं का अंत होते होते बचपन एकदम से आगे बढ़ जाता है। हर एक मुसीबत, असंख्य परेशानियों से परे, अपने में ही गुम बचपन हमेशा सहज बना रहता है।

0: रखा है।
1: किसी भी हाल में कहीं भी रहिए, अगर जिंदा दिल बने रहना है तो अपने भीतर के बच्चे को हमेशा जगाए रखना होगा, ताकि जीवन का चैन और आराम हमेशा हमेशा बरकरार रहे।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों में इशारा हो गया।
3: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
4: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, उनको उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था, तो गडरण भवन सू आयो विनायक करो ये नीति मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
3: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
5: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, प्रतीक्षा समाचारों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।

0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
1: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
2: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
0: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
3: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन

0: निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
1: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश

0: यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर एक बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
3: आपने इस अभियान से, मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वालों लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
6: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आंख के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवर ब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
7: अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज डेल्टा मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के दर्जनों ठिकानों

0: को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। अमरीका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादू गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल बोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से
3: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा प्रादेशिक समाचार यशवी मेहता वांचे छे। वडोदराना मांजलपुर विधानसभा मतविस्तारमां पेटा चूंटणी माटे आजे 260 मतदान मथक पर शांतिपूर्ण माहोलमां मतदान चाली रह्युं छे। आजे बपोरे 1 वाग्या सुधीमां अंदाजीत 21% मतदान नोंधायुं छे। 2,19,000 वधु मतदार भाजपना उम्मेदवार सतीश पटेल अने कोंग्रेसना उम्मेदवार भिक्खाभाई रबारी वच्चेनुं चूंटणी परिणाम नक्की करशे। भाजपना धारासभ्य योगेश पटेलना अवसानने कारणे आ बेठक खाली पड़ता पेटा चूंटणी योजाई रही छे, जेमणे मांजलपुर विधानसभा मतविस्तारनुं अनेक वखत प्रतिनिधित्व कर्युं हतुं। जूनागढ़ महानगरपालिकानी एक बैठक सहित स्थानिक स्वराज्यनी खाली पड़ेली 13 बैठकनी पेटा चूंटणी माटे आजे मतगणतरी चाली रही छे, जेमां केटलीक बैठक पर परिणाम जाहेर थया छे। जूनागढ़ महानगरपालिका वोर्ड नंबर 3 एक बैठक पर भाजपना उम्मेदवार अक्रम कुरेशीनो 1,998 मते विजय थयो छे। कोंग्रेसना उम्मेदवार अशरफ टीमने 2,836, ज्यारे आम आदमी पार्टीना महबूब पंजाने मात्र 246 मत मळ्या हता। दरमियान महेसाणा जिल्लानी विसनगर नगरपालिकाना वोर्ड नंबर 1 पण भाजपना उम्मेदवार नितिन मोदी जीत्या छे। तेमणे कोंग्रेसना उम्मेदवार शैलेश रावणने 1,839 मतथी हराव्या छे। कृषि मंत्री जीतु वाघाणीए आजे वरसादथी असरग्रस्त नवसारी जिल्लाना गणदेवी तालुकाના सालेज, सोनवाड़ी अने गणित गाम सहितना विस्तारनी मुलाकात लीधी। आ दरमियान तेमणे खेडूत, पशुपालक अने स्थानिक ग्रामजनों साथे संवाद करी पाक, पशुधन अने गरवखरीने थयेल नुकसान अंगे विगतवार माहिती मेळवी, साथे ज स्थळ पर चाली रहेली राहत अने बचाव कामगीरीनी समीक्षा करी संबंधित अधिकारीने असरग्रस्त परिवार सुधी झड़पथी सहाय पहोंचाडवा माटे जरूरी सूचना आपी। नवसारी बाद श्री वाघाणी वलसाड जिल्लानी मुलाकाते जशे। સાંજે જિલ્લા કલેક્ટર તથા સંબંધિત વિભાગીય અધિકારી સાથે સમીક્ષા બેઠક પણ યોજશે। આ વર્ષના સ્વાતંત્ર્ય પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી અમરેલીમાં કરાશે, જ્યાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ધ્વજવંદન કરશે। આ ઉપરાંત વિધાનસભા અધ્યક્ષ, મંત્રીઓ પણ વિવિધ જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણીમાં સહભાગી થશે। વિધાનસભા અધ્યક્ષ શંકર ચૌધરી વાવથરા ખાતે ધ્વજવંદન કરશે, જ્યારે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીને વડોદરા જિલ્લાની ઉજવણીમાં જોડાશે। આ ઉપરાંત અન્ય કેબિનેટ અને રાજ્યમંત્રીઓને વિવિધ જિલ્લાની જવાબદારી સોંપાઈ છે, જ્યારે બાકીના જિલ્લામાં જિલ્લા કલેક્ટર ધ્વજવંદન કરશે। રાજ્યભરમાં સવારે 9 વાગ્યે એક સાથે ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ યોજાશે।

दिल्ली का दादा फिल्म का ये गाना था। मन्ना डे और आशा भोसले की आवाजें, सहर लुधियानवी के बोल, एन दत्ता की तर्ज थी। इससे पहले का गीत जागते रहो फिल्म का था, सलील चौधरी का संगीत था, शैलेंद्र के बोल थे, आशा भोसले की आवाज थी।

मजू सुल्तानपुरी के बोल थे प्रीति सागर और भूपिंदर की आवाजों में। ये भूमिका फिल्म का गाना था, संगीत वनराज भाटिया का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश जुर्माना फिल्म का ये गाना।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
2: सोनाली जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हाल चाल है आरती?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: और इस
2: बारिश के दिनों में
1: बारिश का आनंद ले रही है?
2: बिल्कुल, बारिश में भीगते हुए आइए भीगते हुए जाइए यही आनंद है।
1: तो बारिश

0: जो है बहुत खूबसूरत ऋतु है, पर उसका आनंद हमें सावधानी के साथ लेना पड़ता है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि बारिश का मौसम आया कि पर्यटन का आनंद लेने के लिए हम सभी उमड़ पड़ते हैं।
1: ये तो है, लेकिन ये सोचते नहीं है कि कुछ हमें परेशानी भी हो सकती है या कुछ दुर्घटना भी हो सकती है, तो इसलिए क्योंकि बारिश के जो दिन होते हैं ना थोड़े से खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जब हम पहाड़ों पे या ऐसी जगहों पे जाते हैं ना तो थोड़ी फिसलन पड़ा वो जगह रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आपके क्या अनुभव हैं, हमारी जो भी सखियां हैं और सखा हैं उनके क्या अनुभव हैं, वो कभी बारिश के दिनों में घूमने गए हैं तो उनकी क्या यादगार और किस्सा है जो वो बताना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, वो हमें
0: बिल्कुल
1: बताएं।
0: अपने अनुभव लिखकर भेजें तो हमें ज्यादा मजा आता है
1: बिल्कुल।
0: कि बारिश में कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए, ये तो हम सभी जानते हैं। पर अगर आप कभी घूमने गए थे और फोटो लेने कहीं बहुत दूर चले गए, लंबे चले गए, पैर फिसल गया, या फिर बहुत सावधानी के साथ आपने फोटोज ली है, जो भी अपने अनुभव है वो हमसे
1: बिल्कुल,
0: साझा
1: आपने
0: कीजिए।
1: किस तरह से कौन कौन सी सावधानियां ली जिसके के वजह से आपका सफर जो था वो बहुत सुहाना बन गया,
0: जी
1: तो आप ये सब हमें बताइए। और साथ ही हम क्या बात करने वाले हैं।
0: मुझे कुछ कहना है इसके अंतर्गत, हम थूकने की बुरी आदत कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं
1: हाँ
0: तो इतनी गंदगी फैलाते हैं। अपने घर में हम बहुत स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, हम अपने घर में वॉश बेसिन में जाके ही थूकते हैं, लेकिन बाहर घर से बाहर निकले कि इधर उधर थूकना शुरू हो जाता है। ये बहुत गंदी आदत है
1: बिल्कुल,
0: जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का भी खतरा
1: बीमारियां
0: बढ़
1: भी
0: जाता है।
1: तो फैलती ही हैं। साथ ही जो बाहर के पर्यटक बाहर के देशों से आते हैं या घूमने
0: जी
1: के लिए, वो जब देखते हैं कि सड़कों पे किस तरह से हम लोग इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं, तो उससे हमारे जो देश का है ना वो प्रभाव गलत पड़ता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने देश का जो अपने जो अपनी जो प्रतिष्ठा है उसको बना के रखें।
0: जी और ये बात आपने कही है ना आरती, तो जब हम ही लोग विदेशों में घूमने जाते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि वहां पर फाइन होता है। हाँ,
1: ये
0: तब
1: तो है।
0: वहां हम बहुत सावधानी के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पर अपने देश में आके सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने देश का गौरव हमें खुद बनाए रखना है।
1: बिल्कुल
0: साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम डॉक्टर बुधरी ताती के बारे में जानकारी देंगे और
1: जी।
0: हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है।
1: और
0: उपयुक्त टिप्स।
1: हाँ वो है जलने कटने पर, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाना बनाते समय कभी कुकर छू गया या इस तरह का तवे से हमारे हाथ जल गया या कुछ कारणों से हाथ जल गया या कट गया, तो हम उस समय क्या चिकित्सा अपना सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, वो तो हम आपको बताएंगे।
0: जी और साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। हमारे देश में अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है, पर पूरे
1: अंतर्राष्ट्रीय
0: जी
1: जो हाँ
0: पूरे
1: मित्रता
0: वर्ल्ड
1: दिवस
0: में
1: है।
0: अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आज मनाया जाता है। तो हम अपने सभी साथियों को मित्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप भी हमारे मित्र ही हैं ना,
0: जी
1: सखा हैं,
0: हमारे
1: सखी
0: साथी,
1: हैं।
0: उनके नाम में ही सखा है, सखी है, तो हमारे तो बहुत
1: तो
0: करीबी
1: यानी ये
0: मित्र हैं।
1: हमारा दिवस है,
0: जी
1: समझिए।
0: हम सभी का दिवस है।
1: जी बिल्कुल
0: और आप क्या करें,
1: बिल्कुल, एक गीत सुनते हैं ना।
0: सुन लेते हैं गीत।
2: यूं ही तुम मुझसे बात

0: तो जब दोस्ती है तो वहां पर बात करना बहुत जरूरी होता है ना।
1: बिल्कुल, जब हम मिलते रहते हैं ना तो हमारी दोस्ती बनी रहती है, जब हम थोड़ा बहुत मिलना बंद भी कर देते हैं ना फिर भी हमारी दोस्ती बनी रहती है, क्योंकि हम दिल से जुड़े होते हैं।
0: हाँ
1: कुछ रिश्ते होते हैं जो हम ऊपर से अपने साथ लेकर आते हैं, किस जिस घर में हम पैदा होते हैं
0: जी
1: वो हमारे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, लेकिन एक रिश्ता जो होता है ना वो हम खुद बनाते हैं।
0: वो है दोस्ती का रिश्ता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, दोस्ती का रिश्ता है।
0: और हमारे बीच में और श्रोताओं के बीच में, सखियों के बीच में ये प्यार से रिश्ते की डोर बंधी हुई है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। प्रतिवर्ष 30 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से की थी और इस दिवस का उद्देश्य लोगों, समाज और देश के बीच मित्रता, विश्वास और सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल, और मित्रता केवल साथ में घूमने फिरने या हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती है, ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने, गलतियों पर रोक लगाने, सही मार्ग दिखाने और सफलता पर दिल से खुश होने का नाम है। सच्चा मित्र हमारी कमियों को तो छुपाता नहीं बल्कि उन्हें दूर करने का हमें साहस देता है। वो हमारे मुंह पे बताएगा कि ये कमी है, अगर कोई हमें बताएगा नहीं हमारे अंदर क्या कमी है तो हम उसे दूर कैसे करेंगे। तो वो सच्चा मित्र जो होता है ना वो ये नहीं सोचता कि ये बुरा मान जाएगा, वो सीधे बताता है कि ये तुम्हारी कमी है, इसे तुम्हें दूर करना चाहिए।
0: और जिसके लिए कमी बताई है उसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो
1: बिल्कुल
0: फिर वो सच्चा मित्र नहीं होगा, है ना।
1: बिल्कुल, और क्या, क्योंकि आपकी गलतियां बताने वाला कोई मित्र आपके साथ है ये बहुत भाग्य की बात है।
0: जी, एक साथी ने लिखा है आरती कि दोस्त शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से फारसी से हुई है, जिसे हिंदी भाषा ने इतने प्यार से अपनाया है कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हिंदी में इसे मित्रता या मैत्री भी कहा जाता है। इस शब्द में एक ठहराव है। यह रिश्ता खून के रिश्तों से अलग होता है क्योंकि इसे हम खुद चुनते हैं। स्वतंत्रता दोस्ती में उम्र, जाति, धर्म या हैसियत की कोई सीमा नहीं होती है। ये पूरी तरह स्वतंत्र और शुद्ध भावना है।
1: बिल्कुल, और एक हमारे साथी हैं जो कहती हैं कि दोस्त वही जो हर हाल में साथ निभाए, बिना कहे दिल की हर बात समझ जाए। और एक और हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाए जाने की शुरुआत साल 1958 में हुई थी, और पैराग्वे के डॉक्टर थे रेमोन ऑर्टेमियो ब्राचो ने एक अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य देशों और समाजों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति स्थापित करना था। बाद में इस विचार को वैश्विक स्तर पर

0: पहचान मिली और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित कर दिया।
1: एक साथ ही लिखते हैं, सच्चा मित्र वह है जो हमारी मुस्कान के पीछे दर्द को भी पढ़ ले, बिना कुछ कहे हमारे साथ खड़ा रहे। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की खुशबू कभी नहीं बदलती। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, साथ बिताए अनगिनत पल, दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाए, यदि दिलों में अपनापन हो तो दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती।
0: बिल्कुल, क्या बात। हमारे एक साथी कहते हैं, सोनाली, जब जिंदगी में बहुत बुरा हो जाए, कुछ ना रहे, और उस समय दोस्त का हाथ गलबहिया कंधे पर टिके और दोस्त ये कहे, कुछ भी नहीं हुआ, बस तू ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है ना, सच में बहुत ज्यादा इससे हमें
1: संबल मिलता है।
0: तो हमें लगता है कोई है साथ में,
1: कोई है कि अरे मैं हूँ ना, तो चिंता क्यों करता है, चिंता क्यों करती
0: है, शब्द होते हैं
1: जी,
0: यही बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं।
1: एक साथी कहते हैं, मुझे दोस्ती पर बहुत विश्वास है, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद चुनता है, ये रिश्ता विश्वास, अपनापन, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम के मजबूत नींव पर टिका होता है। जीवन के हर सुख दुख, सफलता असफलता और कठिन समय में सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। विविध भारती के द्वारा हमें आप जैसी सखियों के साथ कई सारे श्रोता मित्र भी मिले हैं, आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से चुना जाता है, यही रिश्ता मुश्किल वक्त में सहारा बनता है और खुशियों को दोगुना कर देता है। दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से हम चुनते हैं, और ये कहते हैं कि दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं।
1: एक साथी कहते हैं, दोस्ती जिंदगी का वो संगीत है जो पतझड़ में भी बहार का एहसास कराता है, ये कोई व्यापार नहीं बल्कि आत्मिक संबंध है, यही आपकी जिंदगी में एक भी ऐसा दोस्त है जिससे आप बिना झिझक अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। बहुत सुंदर बात लिखी है, इसी तरह की बातें हमारे सभी साथियों ने लिखी है।
0: तो एक गीत सुने,
1: सुनते हैं।

0: तो कितना सुंदर गीत था, और
1: बहुत
0: ये
1: प्यारा।
0: गाना सुन के हर किसी को अपने दोस्त की याद आई होगी।
1: बिल्कुल।
0: पर जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, भले ही वे हमारे मित्र न हो, पर एक हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक होते हैं
1: बिल्कुल
0: जिनकी बदौलत हमारी जिंदगी सवर जाती है। जी।
1: बिल्कुल। और ऐसे ही लोग होते हैं ना जो हमें प्रेरणा देते हैं कुछ अपने भी जीवन में कुछ अच्छा कर दिखाने की
0: जी।
1: और लोगों की सेवा करने की, क्योंकि वो जो सेवा के जरिए अपनी एक पहचान बनाते हैं ना, वो
0: जी।
1: सच में बहुत ज्यादा उनको महान हम कह सकते हैं, क्योंकि
0: यानी
1: वो
0: उनसे हमें प्रेरणा मिलती है बहुत
1: बिल्कुल
0: ज्यादा।
1: वो दूसरों की सहायता के लिए अपनी लाइफ को, अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं,
0: जी
1: समर्पित कर देते हैं।
0: जी तो आज हम याद करेंगे कहानी पद्मश्री में डॉक्टर बुद्री
1: बुद्धि दाती,
0: दाती को। जी,
1: बिल्कुल
0: डॉक्टर बुद्री दाती छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के हीरानार गांव की प्रसिद्ध समाज सेविका है। बस्तर अंचल में उन्हें लोग प्रेम और सम्मान से बड़ी दीदी या बुआ के नाम से जानते हैं। बुद्री दाती का जन्म 15 सितंबर 1966 को हीरानगर गाँव में हुआ था। वे बहुत ही साधारण और आर्थिक रूप से कमजोर आदिवासी परिवार में जन्मी थी।
1: बिल्कुल। और जन्म के कुछ समय बाद उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी मां ने कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन पोषण किया। बचपन से ही उनमें पढ़ने की लगन और समाज सेवा की भावना थी। सिर्फ 15 वर्ष की आयु थी उनकी जब उन्होंने अपना जीवन समाज सेवा को समर्पित करने का निर्णय ले लिया। कितनी छोटी सी उम्र होती है जब बच्चे खेलना खेलते हैं, आपस में बात करना, अपनी सखी सहेलियों में लगे होते हैं, उस
0: जी
1: समय उन्होंने समाज सेवा का निर्णय लिया।
0: यानी हम तो सोच भी नहीं सकते कि उस उम्र
1: बिल्कुल
0: में इतनी इतनी सुलझी हुई सोच होगी।
1: बिल्कुल। और वर्ष 1981 में उन्होंने आध्यात्मिक दीक्षा ली और 1984 में वनवासी समाज के बीच सेवा कार्यों से वो जुड़ गए।
0: आगे चल के नागपुर में सामाजिक कार्य का उन्होंने प्रशिक्षण भी प्राप्त किया और वर्ष 1986 में उन्होंने बस्तर के दुर्गम जिले और जंगल के में पैदल घूम घूम कर लोगों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के प्रति जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। उस समय अधिकांश गांवों में सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में अपना अभियान जारी रखा।
1: और डॉक्टर बुद्धि दाती ने 1990 में केवल 11 बालिकाओं के साथ में छात्रावास की शुरुआत की थी, जहां आज उनके प्रयासों से अनेक वनवासी बालिकाएं शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने परिवारों को समझाया कि गरीबी से बाहर निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा ही है। उनके छात्रावास की कई छात्राएं आज शिक्षिका, नर्स और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
0: और डॉक्टर बुद्धि दाती ने मां शंखिनी महिला उत्थान केंद्र की स्थापना करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया, जिसमें महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और स्वरोजगार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया, साथ ही महिलाओं को बचत, शिक्षा और आत्मविश्वास का महत्व भी समझाया।
1: और इसके अलावा उन्होंने गांव-गांव जाकर स्वच्छता का संदेश दिया, बहुत से नशा मुक्ति अभियान चलाए, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया, साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया। बस्तर और अबूझमाड़ जैसे कठिन इलाकों में काम करना आसान नहीं था और वहां पर उन्हें कई सारी धमकियों का और विरोध का सामना भी करना पड़ा था।
0: लेकिन उन्होंने सेवा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। वे लगभग 570 दूरस्थ गांवों तक पैदल पहुंची, वहां के लोगों का विश्वास जीता। डॉक्टर ताती अत्यंत सरल और सादगीपूर्ण जीवन जीती है और उन्होंने अविवाहित रहकर समाज सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। वो हमेशा पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा में दिखाई देती है और अपनी संस्कृति पर गर्व करती है। और डॉक्टर बुद्धि ताती का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता पद, धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए निस्वार्थ कामों में होती है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि अगर संकल्प दृढ़ हो तो एक व्यक्ति भी हजारों लोगों के जीवन में आशा और परिवर्तन की नई रोशनी ला सकता है। लगभग 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2026 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल। तो बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायी इनका जीवन रहा है और हमेशा इन्होंने दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाया है।
0: अब एक संदेश सुनते हैं।
1: हाँ बिल्कुल, संगीत सुनते।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा।

0: हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है. वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है.
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन.
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है. पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है.
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

0: आरती
1: रूठ ही नहीं है बस मैसेज निकाल रहे थे, कमेंट्स निकाल रहे थे, इसलिए नहीं बोल रहे थे
0: रूठ गई
1: रूठे नहीं है, और क्योंकि बारिश के दिन है, घूमने फिरने का ऐसा मन करता है ना कि हाँ। चलो इतनी जो बूंदे पड़ेंगी ना चेहरे पे, मुंह पे, हाथ पे, सब बहुत अच्छा लगेगा,
0: वो जो फुहारे आती है ना, पर उसके लिए रिमझिम रिमझिम बारिश चाहिए,
1: तेज नहीं चाहिए एकदम से भागने की वजह नहीं, भैया बहुत हो गया चलो,
0: फिर फिसलने का डर भी है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि अगर तेज दौड़ पड़े बारिश में तो भाई गिर गए तो फिर तो ये बारिश जो है ना हमें बहुत दुखदायक हो जाएगी,
1: पानी भर गया अगर और अब ऐसे ही चल दिए उस पानी भरे में और कुछ पैरों के नीचे आ गया तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम बारिश के दिनों में कहीं निकलते हैं तो,
0: और उसमें ना हमारे चप्पल या फुटवेयर जो हम पहनते हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो बारिश वाली जो चप्पल होती है ना उससे छींटे भी नहीं उड़ते हैं, और वो इतनी लाइट होती है ना कि वो धंसती भी नहीं है जैसे कीचड़ के इसमें, तो चप्पल का बहुत हमें खास ध्यान रखना चाहिए, और खासकर मुंबई की इतनी बारिश होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हम बिना छाता लिए घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, ऐसा लग रहा है कि खुला है एकदम, मौसम अच्छा है और

0: पता चला 5 मिनट के बाद में झमाझम बारिश शुरू हो
1: इसलिए
0: गई।
1: बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपना। और बारिश का केवल अगर कहा जाए तो बारिश केवल एक ऋतु नहीं है बल्कि प्रकृति का एक उत्सव है ना। एक
0: बिल्कुल।
1: उत्सव होता है कि जो धरती को नया जीवन देता है ना। जब बारिश होती है उसके बाद देखो क्या हरी, एकदम लाइट हरे, मतलब हल्के हल्के हरे रंग के जो पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं। मतलब जो सूखी हुई डंडियां, जब सूखे हुए झाड़ जो होते हैं ना
0: जी
1: धूप की वजह से हो जाते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो एकदम खिल जाते हैं जैसे।
0: हरी हरी कोपले आ जाती है,
1: बिल्कुल
0: और जैसे ना हम बाहर घूमने जब जाते हैं ना, तब देखते हैं कि ऐसा लगता है कि धरती माता ने हरी रंग की शाल ओढ़ ली है।
1: बिल्कुल, इतना अच्छा आंखों को लगता है, ऐसा दिमाग को इतना ज्यादा शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा रहता है। और जैसे ही आसमान से बूंदे बरसती है ना तो सूखी धरती जो है वो भी मुस्कुराने लगती है कि चलो हम पे
0: बिल्कुल
1: अब।
0: हमारी तरह।
1: हाँ बिल्कुल। और पेड़ पौधे हरियाली की नई चादर ओढ़ लेते हैं और नदियां, झरने और पहाड़ जो है वो अपनी पूरी पूरी शोभा में नजर आने लगते हैं। ऐसे मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
0: और मानसून का मौसम पर्यटन प्रेमियों के लिए किसी सुंदर सपने से कम नहीं होता आरती। बादलों से घिरी पहाड़ियां, धुंध में लिपटी घाटियां, वर्षा की रिमझिम फुहारे और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को अद्भुत सुकून देती है। और बारिश के दिनों में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है। झरनों का उफान, जंगलों की हरियाली और खेतों की लहलाती फसलें यात्रियों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती
1: सच
0: है।
1: में, अब हम अगर हम अपने किसी गाड़ी से जा रहे हैं ना तो, या ट्रेन से भी जा रहे हैं, तो ये जो दृश्य होते हैं ना ऐसे मनमोहक होते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे चित्र उकेर दिए हो पूरी धरती पे ना।
0: बहुत सुंदर।
1: बहुत सुंदर लगता है। और यही कारण है कि मॉनसून जो पर्यटन है वो आज देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। लोग शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति जितनी मोहक होती है उतनी ही संवेदनशील भी। बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद सभी तभी सार्थक होता है जब उसके साथ सावधानी भी जुड़ी हो।
0: और अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो ब्रेक
1: अंतराल
0: के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और हम बारिश की बातें कर रहे थे आरती,
1: बारिश की बातें कर रहे थे हम, और साथ ही तेज, जो जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो भूस्खलन भी हो जाता है वहां पे कभी कभी, ऐसी जगहों पे जब अचानक बढ़ता जलस्तर और जो फिसलन भरे रास्ते हैं और खराब जो दृश्यता होती है वो यात्रा को जोखिमपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए पहले से ही, और अगर किसी क्षेत्र में भारी वर्षा या बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है तो यात्रा स्थगित कर देने में ही समझदारी है। यात्रा के दौरान रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ जूते, अतिरिक्त कपड़े, प्राथमिक उपचार की किट, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर जरूर याद करके रख लें।
0: बिल्कुल रखना जरूरी है, अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया तो हम तो फिर लोगों के संपर्क से टूट ही जाएंगे ना।
1: और जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती है ना, वो तो बहुत जरूरी है।
0: और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्धारित मार्गों पर ही चलना जरूरी है। चेतावनी बोर्डों की अनदेखी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। नदी, झरनियां, तेज बहाव वाले स्थानों के अत्यधिक निकट जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षणों की लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन सकती है। आज के सोशल मीडिया के युग में सुंदर तस्वीरें और रील बनाने का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर सावधानी में ही बहुत ज्यादा सुरक्षा है।
1: बिल्कुल,
0: तो भले ही आज रील ना बन पाए तो उसमें दुख करने की जरूरत नहीं है,
1: बाद में बना लीजिए अगली बार,
0: क्योंकि जान है तो ये खूबसूरत जहान है।
1: बिल्कुल, और कई बार लोग रोमांच के नाम पर खतरनाक चट्टानों, झरनों और किनारों या उफनती हुई नदियों के पास जाकर सेल्फी और वीडियो बनाने

0: करते हैं, ऐसे जोखिम केवल कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे खूबसूरत तस्वीर वही है जिसे सुरक्षित घर लौटकर हम मुस्कुराते हुए देख सकते हैं।
1: ये बहुत सही बात आपने कही। और अगर हम सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो जो भी वाहन हम चला रहे हैं उसकी अच्छी तरह जाँच कर लेना चाहिए। टायर है, फिर ब्रेक है, वाइपर है, हेडलाइट पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। धीमी गति से वाहन चलाए, पर्याप्त दूरी बनाकर रखे और जल भराव वाले रास्तों से हमें बचना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय अनावश्यक यात्रा न करने से बचना चाहिए और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना हमें बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए केवल स्वच्छ और ताजा भोजन करें जब भी कहीं आप बाहर जा रहे हैं, और पर्याप्त पानी पिए, और भीगने के बाद जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहने। हम लोगों भी बारिश की भीगने की बातें कर रहे थे तो सूखे कपड़े आप तुरंत पहन लें। अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग साथ में हो तो उनकी सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन केवल प्रकृति का आनंद लेने का माध्यम नहीं है बल्कि उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है।
1: और सबसे जरूरी बात है आरती कि जब भी हम बाहर जाएं स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लास्टिक या अन्य कचरा इधर उधर ना फैलाएं, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करें। ध्यान रहे प्रकृति हमें जितना देती है उसे सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है। और बारिश का मौसम हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां संतुलन में छिपी होती है। उत्साह और सावधानी, रोमांच और जिम्मेदारी, आनंद और अनुशासन के संतुलन में
0: बिल्कुल
1: होता है।
0: बहुत सही कहा आपने। और जब हम पूरे ध्यान से सावधानियों के साथ यात्रा करते हैं तो मॉनसून की हर बूंद यादों का मोती बन जाती है और हर सफर जीवन की अनमोल धरोहर बन जाता है, क्योंकि बारिश का असली आनंद तभी है जब यात्रा सुरक्षित हो, प्रकृति है वो सुरक्षित हो और मुस्कान सुरक्षित घर तक लौटे। और सावधानी रखें कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी या चेतावनी अगर कहीं दी गई, जारी की गई है, तो उस जगह की यात्रा को आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए और बाद में जब सही हो जाए तब आप जाइए।
1: और आप क्या करें,
0: ये गीत सुनते हैं
1: गीत।

0: हाँ सुना ली, बारिश के दिनों की जो हम बातें कर रहे हैं ना, तो सखियां सखा जितने भी सब लोग हैं ना, सभी लोग अपने अपने अनुभव बांट रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि अभी कल ही मेरी दो छोटी बहनें अपनी सकुशल अमरनाथ यात्रा से आई, मैं स्वास्थ्य कारणों से जा नहीं पाई, लेकिन उनकी काफी कठिन और मुश्किल भरी यात्रा थी। बारिश के कारण कई सारी रुकावटें भी आई, लेकिन सावधानी से की गई उनकी यात्रा आनंददायक और यादगार रही।
0: बिल्कुल
1: क्या बात है।
0: बिल्कुल, यादगार बन जाती है यात्रा जब हम सावधानी बरतते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, तो कोई जब परेशानी नहीं होती है तो फिर हम उसका लाभ भी उठा पाते हैं अच्छे से। हमारे एक साथी हैं जो कहते हैं कि कल्याण से पुणे जाते समय ये नजारा बहुत देखने को मिलता है कि बारिश के दिनों में सभी के हाथ में मोबाइल के कैमरे चमकने लगते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में घुमावदार रास्ते से ट्रेन का जाना और हरे भरे पहाड़ियां, बादल और कहीं कहीं पहाड़ों से पानी गिरते हुए देखना बड़ा ही सुखद और मनोरम होता है। चलिए आप किसी चीज में जा रहे हैं, से ट्रेन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, चलिए आप उसमें से बना सकते हैं वीडियो, लेकिन पैदल जाते समय बहुत ध्यान रखें कि मोबाइल में ही आपका ध्यान ना रहे, सड़क पे भी ध्यान रखिए, जहां पे आप चल रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए कि आप कोई पहाड़ी पे तो नहीं है। इस तरह से अपनी सावधानी के साथ में आप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मानसून के दौरान यात्रा करने के कई अनूठे फायदे और अनुभव है। प्राकृतिक सुंदरता का चरम इस मौसम में पहाड़, जंगल और घाटियां जीवंत हो उठती है। झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। धुंध और बादलों का खेल दृश्यों को जादुई बना देता है। सस्ता और किफायती सफर, मानसून को पर्यटन का ऑफ सीजन माना जाता है। इस दौरान होटलों, फ्लाइट्स और स्थानीय यात्रा पैकेजों पर भी बहुत सारी छूट होती है। और ये कहते हैं कि इन दिनों मौसम बहुत सुंदर होता है।
0: ये तो है। और एक हमारे साथी हैं जो अभी वहीं पे हैं, मतलब अभी घूमने गए हुए हैं, तो बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां के बारे में बता रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में ही दर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं जम्मू कश्मीर। इस समय बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी हो रही है, यानी भूस्खलन भी हो रहा है, और सावधानी पूर्वक हम इसलिए होटल में रुके हुए हैं और मौसम ठीक होने पर ही हम दर्शन करने जाएंगे। ये वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन, मतलब वो दर्शन करने गए हुए हैं तो वो भी होटल में रुके हुए हैं, तो आप तब तक सावधानी पूर्वक रुके रहिए जब तक मौसम अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और रास्ता साफ नहीं हो जाता।
1: वैसे हमारे अन्य साथियों ने भी इसी विषय में बातें लिखी हैं। एक साथी लिखते हैं कि बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद प्राकृतिक हरियाली, ठंडी हवा और बहते झरनों का अनुभव कराता है, लेकिन इसके लिए वाटरप्रूफ पैकिंग, सुरक्षित जगहों का चुनाव, खान पान में सावधानी बेहद जरूरी है। बारिश में पर्यटन का आनंद मनमोहक हरियाली, पेड़ पौधे, बाग बगीचे खिल उठते हैं, जिससे चारों तरफ ताजगी रहती है, शांत वातावरण, भीड़ भाड़ कम होने से सुकून और शांति मिलती है। और ऐतिहासिक जगह जैसे मांडू है, ओरछा, उदयपुर, ऐसे ऐतिहासिक स्थान बारिश में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। जरूरी सावधानियां हमें छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग, हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही कहते हैं कि अच्छी पकड़ वाले स्किड जूते पहने, स्किड एंटी स्किड जूते पहने, और खान पान हमेशा ताजा भोजन खाए, साफ या उबला पानी पिए। इसी तरह की बातें
0: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बता रही हैं कि मेरे पति की पोस्टिंग बारिश के मौसम में बांध यानी कि डैम पर होती है। करीब 3-4 साल पहले की बात है, उस समय बांध के आसपास ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। कुछ परिवार वहां पिकनिक मनाने आए हुए थे, मौके पर तैनात गार्ड ने उन्हें चेतावनी भी दी कि वो नदी या पानी के बीच में ना जाएं क्योंकि अचानक पानी बढ़ सकता है, लेकिन वो लोग नहीं माने और बीच में चले गए। तभी ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बांध का पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 4 लोग बह गए, बहुत बड़ी ये तो दुर्घटना हो गई। उन्होंने बताया कि मतलब बार बार चेतावनी होने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना।
1: ये बहुत लोग गलत करते हैं कि हमें अपनी जान से ज्यादा किसी चीज की चिंता नहीं करना चाहिए, उसे हमें बहुत सावधानी से उस वक्त उस सिचुएशन को बहुत सावधानी से हमें बरतना चाहिए।
0: हम क्योंकि हमारे पास हम अपनी जिम्मेदारी तो होती है, साथ में परिवार की या जो भी लोग हमारे साथ में गए, इतने सारे लोग

0: हुए,
1: जी
0: तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, जिम्मेदारी को। और सरकार हमारे भले के लिए ही कहती है, वो
1: जी
0: चेतावनी जारी करती है कि हम अपनी जान को बचा सकें, तो सुरक्षा के दृष्टि से ये सब कहा जाता है, तो उसका पालन जरूर करिए।
1: और सबसे जरूरी बात है कि बारिश में थूकना वगैरह ये सब गंदी आदतों को हमें भूलना चाहिए। वैसे तो कभी भी थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से घेर सकती है। और अब क्या किया जाए आरती? एक गाना सुन
0: एक गीत
1: ले,
0: सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: अब हम बात करने जा रहे हैं एक बुरी आदत के बारे में, है ना
1: एक
0: सोनाली?
1: हमारी सखी ने लिखा है आरती कि जिस जगह को हम अपनी नहीं समझते उसे गंदा करना आसान लगता है, लेकिन शहर भी आखिर हमारा ही घर है
0: बिल्कुल.
1: ये विचार नहीं रखते हैं। मैं किसी रिश्तेदार के घर गई थी, एक 4-5 साल के बच्चे ने दीवार पर थूका, मैंने
0: ओ
1: पलट कर देखा तो बोला चाचा भी तो ऐसा ही करते हैं। हमने तो कुछ कहा नहीं पर मन में विचारा है कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, बच्चे जैसा देखते हैं वैसा
0: वो
1: ही
0: तो है,
1: करते हैं।
0: बच्चे वही
1: बहुत
0: सीखते हैं
1: सही बात
0: जो,
1: लिखी है
0: बिल्कुल
1: कि बच्चों के सामने हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही अपनाते हैं, तो हमारी ये कोशिश हो कि थूकना तो है ही नहीं, बिल्कुल जो पीकदान बनी होती है उसी में थूकना है, और अपने घर में जो बेसिन वगैरह होते हैं उसे भी साफ रखना बहुत
0: बिल्कुल.
1: जरूरी है, थूकने के बाद में उसमें भी पानी से अच्छे से धोना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, हम विदेशों में एहतियात बरतते हैं कि हम गलती ना करें, पर अपने देश में गलती को बार बार करते हैं. मैंने किसी से सुना कि खाड़ी देशों में अगर आप सड़कों पर जहां तहां थूकते हुए पाए गए तो उनके पास स्प्रे जैसी कुछ चीज होती है जिसे वो आपके मुंह में स्प्रे कर देते हैं, जिससे आपके मुंह में सूजन हो जाती है और आपका मुंह सूज जाता है, यही सजा दी जाती है. तो ये इस तरीके की चीजें अब हमें तो नहीं पता है, खैर ये बता रही है इस तरीके की चीज. लेकिन ये जो मैसेज है कि भाई थूकना

0: बहुत गलत है, तो
1: जी
0: वो तो आप कहीं भी मत करिए, क्योंकि जो सड़क भी है इसके भी ये भी हमारी ही है, समझ, ये
1: जी
0: सरकार की नहीं, ये जो हम टैक्स देते हैं उससे उसको ठीक किया जाता है। तो ये इस तरीके की चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही
1: वैसे
0: हमें
1: ही अपने घर के
0: सड़क को,
1: बाहर भी स्वच्छता का
0: बिल्कुल
1: ध्यान रखना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इंदौर शहर में कोई व्यक्ति थूकते पकड़ा जाता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना लग जाता है।
0: अरे
1: तो ये तो बहुत सही है।
0: इसी तरीके की जब जब इस तरह की जब सजा मिलती है या इस तरह की चीजें जब निर्णय दिए जाते हैं ना कि आपको ऐसे देना है, पैसे देने, जुर्माना देना है, तब हम उस चीज को थोड़ा सा सोच के करते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे हमें पैसे देने पड़ जाएंगे इसलिए ना करें। तो ऐसे इस तरह से होना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि पान मसाला और गुटखा खाने की लत के कारण लोग बार बार कहीं भी थूकने पर मजबूर हो जाते हैं और मानसिकता, सफाई के प्रति लापरवाही और सामाजिक आचार संहिता का अभाव इस आदत को और भी बढ़ावा देता है।
0: एक साथ ही लिखते हैं कि अपने अपने थूकने वाले लोग ये नहीं देखते कि उनके पीछे और भी लोग आ रहे हैं, और ये बहुत ही गंदी आदत है, इसके लिए इस चीज को नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे बस किसी ऑटो में बैठे हैं या बस में बैठे हैं तो हम मुंह निकाला थूक दिया, क्योंकि नीचे और जो चल रही सड़क पर चल रहे हैं लोग उन पे भी कभी कभी उनके कपड़ों पर गिर जाता है कभी कभी इस तरह, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें इस तरह से नहीं करना
1: कई बार
0: चाहिए।
1: जब हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तब भी ऑटो वाले जो भैया होते हैं वो हालांकि दिन भर वो काम करते रहते हैं पर जरूरी नहीं, नहीं वो चलाते चलाते ऐसे थूक देते हैं, तेज हवा आई तो उसका छींटा जो है पीछे वाले लोगों पर आ सकता है। और
0: बिल्कुल
1: एक साथी ने लिखा है कि खुले में थूकने से टीबी और अन्य सांस संबंधी संक्रमण हवा और सतह के जरिए तेजी से फैलते हैं। गंदगी से गलियां, दीवारें और सार्वजनिक स्थल बदरंग और गंदे हो जाते हैं जो शहर की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं और साथ ही खुद का स्वास्थ्य भी खराब होता है क्योंकि हवा से जो जीवाणु है, कीटाणु है, वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें थूकने की आदत को तो अलविदा
0: बिल्कुल
1: कहना ही
0: बिल्कुल।
1: चाहिए।
0: और एक साथी जो लिखते हैं कि एक सभ्य इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से होती है। जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कहीं भी थूक देता है तो उसे देखकर मन में खिन्नता होना स्वाभाविक है। तो ऐसी आदतें न केवल वातावरण को अस्वच्छ बनाती हैं बल्कि कई बीमारियां फैलने का भी कारण बनती हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए हमें।
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरी शॉप के आगे जब लोग थूकते हैं तो मैंने साफ शब्दों में मना करता हूँ, ऐसी जगह मक्खी मच्छर होते हैं जो बीमारी का कारण बनता है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक कानूनी अपराध है। और इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये दंड जो है ये तो लोगों को डराने के लिए, एक आदत लगाने के लिए दंड है, पर हमें खुद से ही इन आदतों को अपनाना चाहिए कि इसके साथ सामने वाले के साथ साथ हमारा भी इसमें फायदा ही होता है।
0: बिल्कुल। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक गुजरात के बड़ौदा जो बस अड्डा है वहां पर पान मसाला तंबाकू पाए जाने पर जुर्माना लगता है, और मेरे सामने एक बार बस में मैं जब बस अड्डे पर खड़ा था तो एक भाई ने तंबाकू की पूड़ी निकाली दोनों हाथों से उसको बना रहे थे, तो सिक्योरिटी वाले आए और 200 रुपये का दंड किया का जुर्माना भी लगाया, और तंबाकू जो बना रहे थे वो पूड़ी उसको भी ले गए। और स्वच्छता का अभियान और स्वस्थ रहने का अभियान चलाया जाता है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो करते रहना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
1: और अब गीत सुन ले।
0: गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ सोनाली, अब हम बात करेंगे
1: हुँ,
0: कुछ उपयोगी टिप्स के बारे में, है ना।
1: हुँ,
0: तो हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि रसोई में काम करते समय तेल के छींटे उंगलियों और हाथों में लग जाते हैं, जैसे कि अगर आपको लग जाए तो आप पहले ठंडे पानी के नीचे रखें अपने हाथ को, और वहां पर मलाई से कुछ दही लगा लीजिए, कुछ ठंडी चीज लगा लीजिए, ये जलन को भी शांत कर देता है और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। और अधिक जल जाए तब तो फिर मरहम और डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ती है। और हल्की फुल्की जलने पर ठंडा दूध भी बहुत फायदेमंद होता है। तो कभी कभी तवे पर उंगलियां सट जाती हैं या पकौड़ियां तलते समय उंगलियां तेल में टच कर जाती हैं, तो ऐसे में आप ठंडा दूध या थोड़ी देर में पानी में रखने पर भी जलन खत्म हो जाएगी।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि किचन में जो हम हाथ में अगर कट जाता है तो उसमें तुरंत ही सरसों का तेल लगा लिया जाए तो खून रुक जाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है, और उसी जगह पर चीनी लगा ले तो खून तुरंत रुक जाता है। ये काम मैंने बच्चों पर खूब आजमाया है, बच्चे अक्सर गिर जाते थे, होंठ कट जाता था तो चीनी लगा देती थी, जलने पर तो तुरंत उस जगह पर ठंडा पानी या बर्फ या टूथपेस्ट लगाना चाहिए, हो सके तो अगर ज्यादा चोट है तो डॉक्टर के पास
0: बिल्कुल
1: जाना जरूरी है।
0: ज्यादा चोट है तो आप अपना इलाज बिल्कुल भी ना करें,
1: बिल्कुल
0: सीधे
1: तुरंत ही
0: डॉक्टर
1: डॉक्टर
0: के
1: के
0: पास
1: पास
0: जाएं,
1: जी जी
0: और छोटी मोटी चीजों में ही है आप इसको अपनाएं। और एक हमारे साथी जो लिखती हैं कि और कुछ अगर पास में नहीं है तो आप बोरो प्लस भी लगा सकते हैं, वैसे आप कोई चीज तरह की कोई चीज आप लगा सकते हैं, और साथ ही आप कोई घरेलू जैसे कि आलू वगैरह है इनको
1: जी
0: काट के लगा सकते हैं।
1: एक ने लिखा है कि अगर उंगली जल गई है तो हल्की हल्की सिकाई करके उसे ठीक कर सकते हैं, पानी में उंगली डाल दी तो फफोला पड़ना अनिवार्य है, किंतु यदि जले हुए त्वचा का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उचित उपचार की आवश्यकता है। और इन्होंने वही कहा है कि बर्फ से सिकाई करना है, उसके बाद में बहते हुए पानी के नीचे हाथ धोना है, उसके बाद में सबसे पहले है कि उसको धोना जरूरी है कि उसमें जो कुछ कीटाणु अगर लग गए हैं तो उसे बह जाने देना है, और उसके बाद में साफ पट्टी चिपका ले। इसके बाद में इसी तरह का उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ठंडे पानी में हाथ डालना चाहिए अगर जल गया है तो, सीधी बर्फ ना लगाए, और घाव सूजने से पहले जली हुई जगह से अंगूठी या तंग कपड़े या धीरे से हटा दे। और उन्होंने कहा कि छाले जो आ जाते हैं ना, उंगलियों में पड़ जाते हैं छाले, तो उन्हें फोड़ना नहीं है छालों को, क्योंकि उससे बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल, सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको बर्फ के पानी में, ठंडे ठंडे पानी में अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए रखिए बहते पानी में, तो उससे रहता है ना कि ठंडक पड़ती है और जलन जो है वो शांत हो जाती है। लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई अगर बहुत ज्यादा जल गया तो अपनी तरफ से कुछ उसमें मत लगाइए, आप सीधे डॉक्टर को दिखाइए तो वो उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं।
1: और आप क्या करें,
0: ये गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं गीत।
2: आयले चुनमुन चुनमुन

0: तो आरती, सखियों के हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सभी साथियों को हम शुक्रिया कहते हैं और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करते हैं बातें और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये कार्यक्रम श्रोताओं को विविध भारती से और विविध भारती को श्रोताओं से जोड़ने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर हम बोल रहे हैं अतीक खान बोल रहे हैं। सर
0: कहाँ से?
1: सर गांव का नाम है बड़ोदिया बल्लभ और जिला लगता है सागर।
0: सागर मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं?
1: जी सर।
0: तो सागर से कितनी दूर हुआ आपका गांव?
1: सर गांव है 30 किलोमीटर का, दूर दूरी पे है।
0: अच्छा, और बताइए बारिश वारिश कैसी हो रही भाई?
1: सर अभी तो सर बारिश नहीं हुई सर, एक हफ्ता हुआ जब हुई थी सर बारिश।
0: अपने गाँव में खेती कहाँ होते?
1: सर खेती अपने यहाँ होती है थोड़ा इनकी।
0: नदी अद्दी कोई?
1: नदी नहीं दिख रही यहाँ पे सर।
0: तलाव?
1: छोटी नदी है, छोटी बहुत नदी है।
0: तलाव बहे थे कोई?
1: नहीं सर, तलाव है तो सर मैं अपने गांव में नहीं, सर दूर पे तलाव है यहाँ से।
0: हो बाकी का हाल चाल?
1: सर सब बढ़िया है, आप लोग की दुआएं सर।
0: अच्छा, आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सर आज गाना सुनना है आज की मूवी का।
0: कौन सा गाना?
1: नगर के सामने जिगर के पास।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमहल बुगला।
0: अच्छा जी।
1: सर आपको एक बार मैं गाना राजस्थानी सुनाया था सर, आपको याद हो तो।
0: याद तो नहीं है भैया, आज क्या गाना सुनाने वाले हैं बताइए
1: जी। मैं आज सुनाता हूँ

0: भी बहुत खुशी हो रही है कि मेरी आपसे बात हो रही है। और मुझे ये बताइए कि आप विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम बहुत ज्यादा सुनते हैं और उसमें से कौन से कार्यक्रम बहुत पसंद है?
1: जी सर, मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, क्योंकि हम दिव्यांग आदमी है, तो क्योंकि रेडियो से अलावा तो हमारे वो कुछ सारा नहीं है, तो इसलिए हम बहुत सारे कार्यक्रम आपके सुनते रहते हैं। आज के पनकार हो गए, कुछ बातें कुछ गीत हो गए, अभी आपने बदलाव कर दिया गीत माला, तो ये आप सभी सुनते हैं। और जो SMS वाला कार्यक्रम पहले आता था वो भी सुनते थे। हवा मेलो नाटक तरंग जो 3:30 बजे शनिवार को आता है वो भी मैं सुनता हूँ।
0: बहुत ही बढ़िया, आप तो सभी कार्यक्रम सुनते हैं।
1: मेरे को ये खुशी होती है कि जिसका भी विविध भारती बम्बई में फोन लग जाता है ना सर, कि देश के कोने कोने में उनकी आवाज पहुंचती है। देश का ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ विविध भारती में बम्बई में अगर जिसका फोन लगेगा तो वहाँ आवाज नहीं पहुंचेगी सर।
0: सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी सर, आज फिल्म का नाम रहेगा कसूर और उसमें गाने के बोल है कल रात हो गई थी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने विविध भारती में फोन किया और अपनी ये पसंद हमें बताई। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सब प्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरे भाई, ये तो दतरेंगी से नारायण प्रसाद वर्मा, ये वही हैं जिनकी फरमाइश आती
1: है? सर जी नहीं सर जी, वो अलग है सर जी, मेरा जिला बेमेतरा है सर जी।
0: लेकिन नाम एक ही है?
1: नहीं नहीं सर, उस नाम से दतरेंगी में नहीं है सर जी।
0: अच्छा, तो बताइए क्या हाल चाल है छत्तीसगढ़ के?
1: हाँ सर जी, हम लोग अब

0: सभी अच्छे हैं और हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी हुई है सर जी, और मैं किसान आदमी हूँ।
1: अच्छा, तो अभी क्या गतिविधियां
0: हाँ,
1: चल रही
0: अभी
1: हैं?
0: धान का रोपाई का काम जारी है।
1: धान का कटोरा है छत्तीसगढ़
0: जी सर, धान का कटोरा है हमारे छत्तीसगढ़ जी
1: किस किस तरह के चावल उगाते हैं आप?
0: हमारे यहाँ मोटा चावल भी लेते हैं सर जी, और पतला चावल दोनों प्रकार का चावल लेते हैं सर जी, और कुछ अपना सुगंधित चावल भी लेते हैं सर जी हमारे यहाँ।
1: बासमती की बहुत सारी किस्में होती हैं।
0: हाँ सर जी,
1: क्या बात है, आज बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
0: फिल्म रंग का गाना सुना दीजिए सर जी, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ सर जी कि हम लोग विविध भारती जब तक नहीं सुनते हमको चैन आता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर जी।
1: तो चलिए भाई, आपको चैन आए इसलिए रंग फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं सिमीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर।
0: बताइए जी, क्या हालचाल है
1: सर? ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो सर?
0: एकदम अच्छे हैं जी, और आप सभी श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इन दिनों में क्या चल रहा है आपके जीवन में?
1: सर बस अभी काम पे हैं, ड्यूटी पे कॉल। अच्छा। कर रहे थे, कॉल भी लग गई और काफी टाइम के बाद कॉल लगी हमारी आज। तो आपके शो सुनते हैं सभी
0: जी,
1: जो संडे को आते हो आप शाम को हवा महल में, तो वो सुनते हैं ज्यादातर।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि

0: सारे कार्यक्रम सुनते हैं और देखिए कितने सारे श्रोता फोन करते हैं लेकिन सभी का फोन नहीं लगता क्योंकि बहुत सारे देश के अलग अलग श्रोता जब एक साथ ट्राई करते हैं तो कुछ लोग हैं जिनकी कॉल लग जाते हैं और आप उन खुश नसीबों में से एक हैं। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: सत्यनाथ का नाम डाकू और गाना है कभी गम से दिल लगाया।
0: क्या बात है, चलिए पूरी करते हैं अपनी बातचीत और सुनवाते हैं डाकू फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: जी बताइए, नांदेड़ के क्या हालचाल है भाई?
1: नांदेड़ में तो सर अभी बारिश चल रहा है।
0: अच्छा, बारिश अच्छी चल रही है।
1: हाँ जी।
0: और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज तो सर अभी मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर जिंदगी
1: हाँ।
0: के मजे ले रहे हैं।
1: हाँ सर, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ फिर भी।
0: क्या बात है, यानी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: बिल्कुल सही सर।
0: बताइए कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं आप?
1: रिटायरमेंट के बाद बोर हो जाता कि समझ में नहीं आता कि क्या करना है अपने सेहत के वास्ते, फिर अपने को दूसरी नौकरी ढूंढ ली सर मैं।
0: बहुत ही बढ़िया है। तो कितने घंटे काम करते हैं दिन में?
1: अब दिन में 8 घंटे करते हैं सर।
0: बढ़िया। और छुट्टी के दिन क्या दिनचर्या होती है?
1: छुट्टी देंगे सर, अपना रेडियो साथ रहता है, गार्डन वगैरह घूम के आते सर।
0: बहुत ही बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज बगावत फिल्म का है सर, नागंता रूप है तेरा।
0: वाह, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: डर समझ रहा है? नाता, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: डोर समझ रहा है नाता, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कहना।

0: जी जी आप गए हैं उस तरफ?
1: हाँ मैं उस तरफ गया हूँ, लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास।
0: अच्छा, लेह लद्दाख जाने के लिए कौन कौन सी सावधानियाँ रखने की जरूरत है, फिटनेस किस तरह की होनी चाहिए?
1: वहाँ पे ये तो ट्रक वगैरह में जाते हैं, वो छोटे गाड़ी में भी जाते हैं, लगभग एक दिन और एक रात लग जाता है लेह में जाने में।
0: जी, और ऊंचाई बढ़ती है तो सांस की तकलीफ होती है?
1: हाँ हाँ, लगभग हार्ट में दर्द होता है, ऐसा लगता है।
0: जी, लेकिन वहाँ घूमने लायक इलाके हैं।
1: हाँ सर
0: जी, आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप लतीफ जी?
1: और हमें सुने कुदरत फिल्म का, तूने और रंगी इलाके से जादू किया, पिया पिया बोलो मत वाला जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोना मरग से अपनी मिशोता लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ भाई कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है।
0: सोनमर्ग में मौसम कैसा है इस वक्त?
1: आज यहाँ पे लगभग धूप है, बहुत 6 दिन से बहुत बारिश आया था यहाँ पे, बहुत नुकसान भी हुआ।
0: अच्छा, और अब बारिश नहीं है, अब लगातार धूप खिली है?
1: हाँ आज धूप भी है।
0: कश्मीर में बारिश का मौसम किन महीनों में होता है?
1: लगभग ये हर महीने होता है।
0: हाँ, हर महीने होता है,
1: बीच में होते हैं।
0: सोनमर्ग तो बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई।
1: गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम वगैरह सभी पर्यटक के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: और सोनमर्ग से ऊपर की तरफ सड़क कहाँ की तरफ जाती है?
1: वो जाती है लेह लद्दाख की।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, कैसे हैं यूनुस भाई? मैं जिला भागलपुर बिहार कहलगांव से सुजीत राय, और मैं बताऊं सर, मैं बचपन से दिव्यांग हूं और मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है।
0: ओ, और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है भाई?
1: सर, मुझे सबसे ज्यादा म्यूजिक में रुचि है सर, तो मैं सबसे ज्यादा म्यूजिक में ही लगाव रखता हूँ।
0: आपने कहाँ से सीखा?
1: सर, मैं कहलगांव में ही, एक मार्स में ही संगीत विद्यालय है, मैं वहाँ से ही सीखा था।
0: अच्छा, तो कोई डिग्रियां या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं आपने?
1: जी सर, मैं सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ संगीत में।
0: और ये जो संगीत की शिक्षा हो रही है, ये गायन की हो रही है या वादन की हो रही है?
1: सर जी, मैं गायन सीखता हूँ।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है। तो बताइए हमारे लिए क्या सुनवाने वाले हैं?

0: जब?
1: सर मैं तो दस्तक फिल्म का एक गीत सुना हूँ और आवाज लता दीदी की है और गाने के बोल हैं बैया ना धरो बलमा।
0: क्या बात है, इससे मिलती जुलती कोई शास्त्रीय बंदिश याद है आपको?
1: जी सर, एक वो गाना है ना राग देश, मुझे याद है, अगर कहेंगे तो सर मैं थोड़ा सा गुनगुना सकता हूँ।
0: जरूर।
1: ये राग देश है। बादल रे उमड़ घुमड़ घन बर से बिजली चमक जिया डरात बादल रे, ये सब सीखा है।
0: वाह वाह, शानदार। तो सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी सर।
0: कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर हम बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट उमरिया मध्य प्रदेश से,
0: जी बोलिए
1: पृथ्वीराज
0: बोलिए।
1: यादव।
0: पृथ्वीराज यादव जी, मुझे ये बताइए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बोल रहे हैं आप?
1: जी जी इसका एक एरिया है सर, अपना गांव न्यूसी लगता है।
0: अच्छा, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दायरे में कितने गांव आते हैं?

0: सर गांव तो बहुत सारे आते हैं, 105 के करीब।
1: अरे बाप रे, और ये बारिश के दिनों में तो बांधवगढ़ में पर्यटकों का प्रवेश बंद हो जाता है ना?
0: जी, 1 जुलाई से 1 अक्टूबर के लिए बंद होता है सर।
1: अच्छा, इस बीच में आप लोग तो चूंकि गांव में ही हैं और उस दायरे के अंदर हैं, तो क्या आपको साइटिंग्स होती हैं? आपको दिखते हैं टाइगर्स?
0: जी, टाइगर तो हमेशा 12 महीने दिखते हैं सर, क्योंकि अपना गांव एकदम कोर से सटा हुआ है जंगल से, तो उनके दर्शन तो हमें सुबह शाम ही हो जाते हैं।
1: आप लोग किस तरह की सावधानियां रखते हैं ताकि कोई घटना न हो?
0: सर देर रात जैसे टाइम से हम जब लोग जाते हैं तो दिन में जाते हैं, शाम के या सुबह टाइम ज्यादा जंगल में नहीं जाते सर।
1: मान लीजिए कि हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाना हो, हमें या हमारे किसी साथी को, तो आप तो उस इलाके के हैं, तो हमें ये बताइए कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है जब साइटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं?
0: सर नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी।
1: नवम्बर से फरवरी, और दिन का कौन सा वक्त?
0: दिन का वक्त वही सर 9 से 12।
1: अच्छा, 9 से 12 में साइटिंग ज्यादा क्यों होती है भाई?
0: सर उस समय सब अपने विचरण के लिए निकलते हैं ना सर।
1: अच्छा, आपको सबसे अच्छा जो दृश्य देखने को मिला वो क्या मिला था?
0: सर यहाँ तो सबसे अच्छा दस बांधवगढ़ का एरिया है सर, उसके अलावा एक झरना प्रपात है हमारे गांव के बाजू में, वो भी बहुत अच्छा है सर, और हमारे यहाँ के मोर बहुत अच्छे हैं सर।
1: मोर? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, यानी आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में रह रहे हैं।
0: जी, प्रकृति का संदार है सर यहाँ।
1: और आपका काम क्या है भाई?
0: सर हमारा ऑनलाइन डिलीवरी वाला काम करते हैं सर।
1: उस इलाके में?
0: जी जी।
1: तो मोटर बाइक से घूमते हैं?
0: जी जी जी।
1: अच्छा, विविध भारती की आपके जीवन में क्या जगह है?
0: विविध भारती हमारे जीवन में बहुत अच्छा है सर, हमें सूचना ज्ञान मनोरंजन जो कुछ भी मिला बचपन से लेके अभी तक, हमारे यहाँ आकाशवाणी केंद्र शहडोल है सर, वहाँ से सुनाई देता है आपका आकाशवाणी, तो यहीं से हम पले बढ़े हैं, और सबसे अच्छा रेडियो ही है, रेडियो से अच्छा आज तक हमारे यहाँ कोई प्रसारण का केंद्र नहीं है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात आपने बोली। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं भाई आप?
0: सर हम आज गाना सुनना चाहते हैं, आ अब लौट चले। ओ यारो माफ करना, कुछ कहने आया हूँ।
1: चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।
2: इंजीनियरिंग માં પાકું કરિયર બનાવું છે તો ડિપ્લોમા બીઈ કે ડીટુડી માટે બેસ્ટ ઓપ્શન છે કેજે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી સાવલી
3: કેજેઆઈટી સાવલી આપે છે 100% જોબ પ્લેસમેન્ટની ગેરંટી
2: વિઝિટ અવર વેબસાઇટ kjit.org ટુડે

0: हेलो फरमाइश
1: सर जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं
1: जी? उदयलाल टेलर बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: दिलों की नगरी उदयपुर, राजस्थान से।
0: क्या बात है, क्या मौसम है वहाँ?
1: मौसम सुहाना है सर।
0: बारिश वारिश
1: है? बारिश हल्की हल्की हो रही है, तेज भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, औसत मिनिमम बारिश हो रही है।
0: क्या बात है, और बारिश के मौसम के मजे क्या हैं?
1: सर बहुत ही आनंद आता है बारिश का मौसम, सर से मुझे तो प्यारा लगता है।
0: तो झीलों की नगरी के लोग बारिश के मौसम में कहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए?
1: उदयपुर में तो बहुत सी जगह है पिकनिक मनाने के लिए। संडे रात तो बहुत भीड़ थी सभी जगह पर, आज पूरा न्यूज़पेपर उसी से भरा हुआ है। इतनी भीड़ हुई थी सभी जगह पर पिकनिक मनाने लोग गए थे।
0: अच्छा, बहुत ही खुशी की बात है। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: जी सर, पुरानी फिल्म है राज कपूर और नरगिस दत्त की, श्री 420 गीत है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल,
0: क्या बात,
1: मालूम नहीं कहाँ है मंजिल।
0: ये बिल्कुल बारिश का आपने गाना चुन लिया है।
1: छतरी के नीचे दोनों भीगते हुए गाना गाते हैं।
0: तो बातों का सिलसिला रोकते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से, और हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867 0288 यानी 02228607288, दूसरा टेलीफोन नंबर 0224002466 यानी 02240024662। आपको बता दें कि आज जिन श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स लगे हैं वो अगले दो महीने तक हमें फोन न करें ताकि दूसरे श्रोताओं को मौका मिल सके। तो अब चलने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का था। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाए गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, किसी रिश्ते का सबसे दुखद पल या यूं कहें दुखद क्षण वो नहीं होता जब दो लोग अलग होते हैं। दुखद पल वो होता है जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। शब्द होते हैं पर आपसी समझ नहीं होती, साथ है लेकिन सुकून नहीं होता, बातचीत होती है लेकिन दिल की बात नहीं होती। और ये रिश्ता बाहर से तो वैसा ही दिखता रहता है लेकिन भीतर उसका जीवन खत्म होता जाता है।

बहुत लोग साथ रहते हैं फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना। किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

0: पहाड़ कभी एक दिन में नहीं तरकते, उनके भीतर दरारें बहुत पहले पड़ जाती हैं। किसी को इसका आभास नहीं होता, लेकिन जब वे टूटते हैं तो सबको लगता है कि ये अचानक हुआ। ठीक ऐसे ही हर रिश्ता शब्दों से नहीं टूटता, कई बार वो उन बातों से टूटता है जो कही ही नहीं गई होती। जी हाँ, जो कही ही नहीं गई होती।
1: શ્રોતા મિત્રો, વિવિધ ભારતીનું વડોદરા કેન્દ્ર આપ સાંભળી રહ્યા છો. KJIT સાવલી, ધોરણ 12 સાયન્સ પછી એન્જિનિયરિંગ અભ્યાસ માટેનો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ KJ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી સાવલી.
2: सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी। अब नहीं रहेगी मच्छरों से परेशानी, क्योंकि एक मच्छर इंसान को सोने नहीं देता है। नई टेक्नोलॉजी की मच्छर जाली के लिए संपर्क करें 45 वर्ष से आपकी सेवा में उपस्थित RK ब्लाइंड्स, दांडिया बाजार, 9825027525। सेहत आपकी, सुरक्षा हमारी। ये है RK ब्लाइंड्स की जिम्मेदारी।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दो चेतनाएं धीरे धीरे ये तय करने लगती हैं कि वे एक दूसरे को ऊपर उठाएंगी या भीतर से खोखला कर देंगी। अगर दो दिलों का तालमेल सही है तो वहाँ प्यार, इज्जत, एक दूसरे को समझने की गुंजाइश होगी और इन सब के बीच जो धागा इस रिश्ते को हर दिन नया रखेगा वो है रोमांस। हाँ, रोमांस, वरना तो अंतरिक्ष और जमीन के बीच जितनी गहरी खाई ही होगी।

0: कभी कभी लगता है एक खामोश सा दर्द है जो चीखता नहीं, सीने में भारी होकर बैठ जाता है बस। हाँ, हर वक्त खामोशी अच्छी नहीं होती। रिश्तों में संवाद की एक छोटी सी खिड़की खोलकर हमेशा रखनी चाहिए। खुली खिड़की मन रूपी आंगन में रोशनी लेकर आती है, लेकिन हम अपनी धारणाओं की दीवारें बहुत ऊंची करते चले जाते हैं और इन दीवारों को फिर किराया नहीं जा सकता।
1: क्या

0: जीवन में प्रेम का आना एक अद्भुत और अप्रतिम अनुभव होता है, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी हम एक ऐसे रिश्ते में उलझ जाते हैं जहां आनंद केवल क्षणिक होता है और दर्द नियति बन जाती है। वो प्रेम नहीं होता, एक भावनात्मक तूफान होता है और हम उसमें घिरते चले जाते हैं। तब भीतर से एक सवाल उठता है, पहले जो था वो क्या था, वो अब कहां गया।
1: मेरी दुनिया, मेरी दुनिया लुट

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम लेके हम हाजिर होंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये है विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है तराने नए पुराने।

0: બ્રો, લગ્નની શોપિંગ થઈ?
1: હા, વરસાદમાં.
0: યસ, અને એ પણ પૂજા પ્લસ સાથે. ડિઝાઇનર અને સ્પેશિયલ વેડિંગ કલેક્શન પર છે અપ ટુ 50% ઓફ. વિઝિટ પૂજા પ્લસ, નવરન સિનેમા રોડ, રાવપુરા, વડોદરા.
2: संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है. विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है. वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है. श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है.
3: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है. यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है. और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो. अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए.
2: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है. लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था. भोजन अवकाश के बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया. चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं. डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है.
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम.
5: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कोई समय गवाए घोषणा की है कि किसी भी छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके. यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा.
4: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट.
2: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है. नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है. श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है. बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है. शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की. इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई. प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी. छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 की विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पांडुप जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी ली. फिदाइन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है. हमलों में विस्फोटक से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था. मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ. निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 पर बंद हुआ. पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज भी प्रदर्शन जारी रहे. सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे. जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया है. 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल

0: खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
3: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण त भवन सु आयो विनायक, करो ये नसीती विन धरी, मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
2: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

हसीना, अरे दोनों हसीना, काजल वाली मेरा कुछ पता न।

हर मन मेरा मन चला सबसे प्यार से मिला पीछे मुड़ के ना।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको बता दें आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोखा के अंतर्गत। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम संध्या रंजन। 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। कलाकार हैं पंडित सी आर व्यास। इसका चौथा भाग सुनेंगे आप। प्रस्तुति रूपाली रूपक। जयमाला का समय रहेगा शाम 7:00। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष में इनसे मिलिए। इसमें सुनिए पार्श्व गायिका सोनाली बाजपेयी से गणेश शर्मा की बातचीत। रात्रि 8:00 हवा महल में सुनिए झलकी बलि का बकरा। लेखन निर्देशन मुकुल गोस्वामी का। चित्रलोक का समय रहेगा रात्रि 8:15। रात्रि 9:00 सुनिए आपके लिए आज के फनकार। आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक सोनू निगम पर। आलेख और स्वर ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता शकील। रात्रि 10:00 सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर जी श्याम का। प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। आइए अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर सुनिए वंदनवार। सुबह 6:30 और शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम विवरण झरोखा में। रामचरितमानस आप सुनेंगे 6:35 पर। कल प्रसारित होगा भाग 266। सुबह 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता श्रृंखला ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा। कलाकार हैं पंडित सी आर व्यास। कल इसका पांचवा भाग सुनवाया जाएगा। प्रस्तुति रूपाली रूपक। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर सुनिए हम है राही प्यार के। सुबह 8:15 और दोपहर 2:00 सुनिए वंदे मातरम एक जय घोष। लेखक मिलिंद सबनीस। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सुबह 8:30 पर सुनिए चित्रलोक आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद रफी पर। प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। सुबह 10:00 पिटारा में सुनिए हेलो फरमाइश। संवादक यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी। रंग तरंग आप सुनेंगे सुबह 11:00। यादों की महफिल सजेगी दोपहर 12:05 पर। दिन में 1:00 सुनिए सुरीला सफर। सदाबहार नगमे आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। दिन में 3:00 कार्यक्रम होगा हेलो सहेली। संवादक सोनाली पाठक। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दिन में 4:00 सुनिए पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। कल आप सुनेंगे डॉक्टर जया आनंद की लिखी कहानी मिस मैच। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 6 गीत का समय रहेगा शाम 5:00। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। जयमाला का प्रसारण होगा शाम 7:00। 7:45 पर सुनिए इंद्रधनुष के अंतर्गत अनमोल यादें। फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर से जयंत पात्रिकर की बातचीत का पांचवा भाग। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। हवा महल का समय रहेगा रात्रि 8:00। कल हवा महल में सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी का रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं हरीश दीक्षित। प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर। चित्रलोक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:00 सुनिए आपके लिए आज के फनकार। कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पर। कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री मुमताज पर। आलेख और स्वर यूनुस खान का। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। 6 गीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00। आलेख और स्वर पूनम त्रिपाठी का। प्रस्तुतकर्ता राघवेन नेगी।

और रात्रि 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात। ये थी रूपरेखा आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संध्या रंजन।

अभी आपने पीके फिल्म का गाना सुना, सोनू निगम की आवाज में, स्वानंद किरकिरे के बोल थे, संगीत था शांतनु मोइत्रा का। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में शागिर्द फिल्म का ये गाना, इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। प्रस्तुत करता है जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास।
1: नमस्कार, अभी गौड़ सारंग के बारे में बात करेंगे। एक गौड़ क्या है ये सोचने की बात है। गौड़ बिलावल है, गौड़ सारंग है, गौड़ मल्लार है, ऐसे जो गौड़ के प्रकार है उसमें एक बात ध्यान में रखने की है कि जिसमें ये म्यूजिकल फ्रेज आती है सारे सागरे मगा मरे गा सागरे मगा, ये संगति जिसमें है वो गौड़ का अंग है। अभी गौड़ सारंग में एक बंदिश पेश कर रहा हूं मैं। ये बंदिश ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा एक पुरानी बंदिश है,

अभी ये बंदिश में या राग का ये मुखड़ा जो सम जो आती है ना दैवत पे आती है, बहुत कम सुनाई देती है ऐसी बंदिश, लेकिन ये बंदिश में दैवत ऐसा रखा है तो एक सोचने की बात है कि गौड़सारंग में दैवत पे बंदिश कैसी रखी है, ऐसे लोग पूछते हैं। लेकिन अभी पुराने जमाने में जो कलाकार थे उसने ये सोच के किया है तो हमको तो ये मानना चाहिए कि ऐसा हो सकता है।

और एक संगति आती है इसमें जो निषाद पे बहुत ही स्ट्रेच कर रही है, छांड दे मोरी मैया। बहुत सारे कम लोग ये नहीं बताते हैं, लेकिन ये बताने में कोई हर्ज नहीं। जहां तक हमारी पुराने बंदिश में ये जगह रखी है तो ऐसा उसका विस्तार करने में कोई नुकसान नहीं है। अभी गौड़ सारंग गौड़ बिलावल की एक बंदिश

तो कहने का मतलब ये कि गौड़सार में गरे में संगति बहुत ही प्रोमिनेंट है और इसको बार बार दोहराना चाहिए, तब ये राग का नक्शा जो है, फेस जो है, बराबर दिखेगा।

0: ख्याल गायकी में बंदिश की परंपरा इस श्रृंखला की चौथी कड़ी अभी आपने सुनी। प्रस्तुतकर्ता थे जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित सी आर व्यास। हारमोनियम पर इनके साथ संगत की पुरुषोत्तम वालावलकर ने और तबले पर साथ दिया मुकुंद राजदेव ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपाली।

0: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
1: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, उनको उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सुयो विनायक करो ये नीति मारा दिलीप सेन जी पधारिया।
0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

फौजी भाइयों के कार्यक्रम जयमाला में आपका स्वागत है। आज कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी दोस्त प्रीति शर्मा। तो चलिए हमेशा की तरह कार्यक्रम का आगाज करते हैं देशभक्ति गीत के साथ। इस गाने को हमने लिया है फिल्म मिशन मजनू से। इसे गाया है सोनू निगम ने, गीत मनोज मुंतशिर का है, संगीत रोचक कोहली का।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: सेना। अभी आपने सुना भारतीय सेना का गीत। गीत संगीत और गायक कलाकार थे कैलाश खेर। कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में है। इसे हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से। गीत आनंद बख्शी ने लिखा।
1: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा प्रादेशिक समाचार जयेश पटेल वाँचे छे। सौ प्रथम मुख्य समाचार। वडोदरा मांजलपुर विधानसभा की पेटा चूंटनी मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न। स्थानिक स्वराज्य की पेटा चूंटनी परिणाम जाहिर। राज्य में भारतीय अति भारी वरसाद संभावित जिलों की समीक्षा कराई। उच्च अधिकारी की रजा रद्द करने आदेश। मध्य और दक्षिण गुजरात में आज भारी अति भारी वरसाद की आगाही। 11 जिला शाला कॉलेजों में आवतीकाले रजा। महसूल विभाग हस्तकनी तमाम कचेरी वर्ग 3 कर्मचारियों ने जिला आंतरिक बदली की सत्ता कलेक्टर ने सौंपाई। आ वर्षना स्वातंत्र पर्व की राज्यकक्षा की उजवणी अमरेली में कराशे। सीबीएसई रमत में सौथी वधु चंद्रकनो विक्रम बनावनार भावनगर की शाला खिलाड़ियों की राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा माटे पसंदगी। वडोदरा मांजलपुर विधानसभा मतविस्तार में पेटा चूंटनी माटे आज 260 मतदान मथकों पर शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न थयु। सांजे 5 वागे सुधी में सरेराश 34.35% मतदान नोंधायु। भाजपा उम्मीदवार सतीश पटेल और कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारेनी भावि आज ईवीएम में कैद थयु। आ पेटा चूंटनी माटे 3 ऑगस्टे मतगणतरी हाथ धराशे। भाजपा धारासभ्य योगेश पटेल अवसान ने कारण आ बैठक खाली पड़ता पेटा चूंटनी योजाई रही है। जमणे मांजलपुर विस्तार अनेक वक्त प्रतिनिधित्व कर। जूनागढ़ महानगरपालिका एक बैठक सहित स्थानिक स्वराज की खाली पड़ेली बैठकों की पेटा चूंटनी परिणाम आज जाहिर थे। जूनागढ़ महानगरपालिका वोर्ड नंबर 3 एक बैठक पर भाजपा उम्मीदवार अक्रम कुरेशी 1998 मते विजय थयो। देवगढ़ बारिया नगरपालिका बैठक पर भाजपा बैठक पर कांग्रेस बैठक पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार जीत्या। विसनगर नगरपालिका एक बैठक पर भाजपा उम्मीदवार विजय थयो। हळवद पोशीना तालुका पंचायत एक एक बैठक पर भाजप। नेत्रंग तालुका पंचायत एक बैठक पर आम आदमी पार्टी और फागवेल तालुका पंचायत एक बैठक पर कांग्रेस उम्मीदवार जीत्या। 2 ऑगस्ट सुधी राज्य में भारी अति भारी वरसाद की आगाही ने ध्यान राखी महसूल विभाग अधिक मुख्य सचिव डॉ जयंती रवि की अध्यक्षता में आज सर्वग्राही समीक्षा कराई। आ दरमियान श्रीमती रवि वरसाद संभावित तमाम जिलाना उच्च अधिकारी साथ हाल की परिस्थिति और आपत्ति व्यवस्थापन की पूर्व तैयारी ताक मेळव्यो। बैठक में प्रभावित तमाम जिलाना अधिकारी रजाओ तात्कालिक रद्द करी दरेक जिला में 24 कलाक कंट्रोल रूम कार्यरत राखवा सतत देखरेख माटे एक वर्ग एक अधिकारी निमणूक करवानो पण आदेश अपायो होवानुं राहत कमिश्नर गौरांग मकवाणाए जणाव्युं।
2: समग्र राज्य में जिला टीमों स्थानिक पुलिस वहीवटतंत्र अधिकारी पूरी टीम साथ पूरा संकलन में रही और तमाम मशीनरी मैपिंग कर इवेक्यूएशन एट शिफ्टिंग की कामगी सत्वरे करे एनी साथ जितला बोट्स रिसोर्सिस एमनी पास अवेलेबल होने रेडी टू यूज अवस्था में राखे ये आदेशों आप दें। हूं राज्य की जनता ने विनती करवा मागू छू कि बिनजरूरी बाहर निकलवा टाड़े काम सीवाय मेडिकल इमरजेंसी सीवाय कोई बाहर न निकले यी मेरी राज्य की जनता ने विनती है।
1: मध्य और दक्षिण गुजरात में आज भारी अति भारी वरसाद की आगाही है। हवामान विभाग ने जणाव्या अनुसार आज वडोदरा छोटाउदेपुर नर्मदा सूरत डांग नवसारी वलसाड़ तापी और दमण और दादरा नगर हवेली में ओरेंज एलर्ट जाहिर कराय। दरमियान मछीमारों ने दरियो न खेड़वा पण सूचना आपवामां आवी होवानुं हवामान विभाग नियामक डॉ एके दासे जणाव्युं।
3: जुलाई जो हैवी टू वेरी हैवी कई स्थानों में होने का संभावना रहेगा वो जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन में बड़ोदरा छोटा उदयपुर नर्मदा सूरत डांग नवसारी वलसाड और तापी दमन दादरा नगर हवेली के लिए दिया गया है ऑरेंज वार्निंग के साथ। और हैवी रेनफॉल खेड़ा आनंद पंचमहल दाहोद महीसागर भारूच के लिए येलो वार्निंग के साथ दिया गया है। सौराष्ट्र कच्छ के लिए आज खाली थंडरस्टॉर्म वार्निंग है।
1: भारी वरसाद

दिल के।

मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा तुम पत्थर शीशा पत्थर टकराने दो आने वाला आएगा जाने वाला।

0: अंतराल के बाद कार्यक्रम जयमाला में आपका स्वागत है। सुनिए ये संदेश।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गाना मोहम्मद रफी की आवाज में है। फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार, गीत लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में ही रांझा फिल्म का गाना। गीत लिखा कैफी आजमी ने, संगीत मदन मोहन का,

0: आपको सुनवा रहे हैं झलकी बलि का बकरा, लेखक और निर्देशक मुकुल गोस्वामी।
1: ओ, कौन है भाई? अरे खोलता हूँ। अरे मकान किराए का है, घर का नहीं। अरे दरवाजा तोड़ डालोगे क्या?
2: जे बेटे, दरवाजा खोलो, देखो कौन आए हैं।
1: अरे खोलता हूँ भाई, पूरी गैंग है। हाय कमरा,
2: खोल रहा है।
3: नमस्कार।
1: 100-100 बार नमस्कार।
4: क्या
1: जी? मेरा मतलब है कि सबको सामूहिक और इंडिविजुअल नमस्कार।
4: नमस्कार।
1: ओ, मेरे कान 6x6 के हैं, थोड़ा धीरे और दूर से बोलिए।
3: अंदर आने को नहीं कहोगे अजय बेटे?
1: अंदर ही तो हैं आप,
3: है?
1: फिर भी आइए। ये बोरिया बिस्तर सारा आपका ही है ना?
3: कमरा तो बहुत छोटा है बेटे, गुजारा कैसे होता होगा?
1: जी अकेले आदमी के लिए तो ठीक है।
3: अरे इस उम्र में इतनी चिंताएं, इतनी कुंठाएं, भाई तुम्हारे तो ऐश करने के दिन हैं।
1: जी
3: मौज करो।
1: जी शुक्रिया।
3: मैं जब तुम्हारी उम्र का था जय बेटे, तो खूब मजे करता था, महंगा खाया, महंगा पहना और महंगे लोगों से ही दोस्ती।
1: जी, वो छोटी सी सरकारी नौकरी में इतना कहीं बच पाता है?
3: अरे बचेगा, क्यों नहीं, खूब बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? तुम क्यों नहीं बोलती?
4: अजी बचेगा क्यों नहीं, 5-7 लाख तो उसे बचता ही है सालाना।
5: सालाना नहीं, महीने का बोलो मम्मी।
3: कितनी समझदार है हमारी रानी बिटिया, 2-4 लाख कमाना तो बाएं हाथ का काम है।
1: जी क्यों नहीं, वो तो शक्ल ही बता रही है।
3: क्या मतलब, क्या लिखा है हमारी शक्ल में?
1: अजी लिखा नहीं है, छपा है। 100-100 के नोट छपे हैं आपके चेहरे पर, भला संपन्नता कहीं छिपती है?
5: कितना अच्छा मजाक करते हैं, हरे हरे नोट नहीं, काले काले नोट बोलो, और चेचक के दाग तो चांदी के सिक्के नजर आ रहे होंगे।
4: चुप पकड़ी कहेगी। अरे सबको थोड़े ही बताते हैं कि पापा काले कलूटी बैंगन का भुर्ता है। अरे सबके लिए तो वो फिल्मी हीरो है, स्मार्ट।
5: विलेन कहते शर्म आती है ना मम्मी।
4: बहतरी, जैसी शक्ल वैसी अकल, अब की बोली तो बची खुची दांत भी तोड़ दूंगी तेरे।
3: दरअसल क्या है अजय बेटे, कि वैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ 5 स्टार में ही ठहरता हूँ।
1: जी क्यों नहीं, जहाँ भी यही सोच कर आए होंगे, अब तो देख लिया ना।
3: अरे चिंता क्यों करते हैं, कमरे का महल बनते कितनी देर लगती है क्या? बस जरा आदमी समझदार होना चाहिए, क्यों प्रिय?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे तुम भी तो शादी से पहले इसकी तरह ही कंगले थे
1: जी।
4: बस डैडी की बात मान ले और बन गए हीरो।
5: पापा फिल्मों में भी तो ऐसा ही होता है ना, हीरो कंगाल, हीरोइन अमीर, मेरे जैसी।
4: कितनी समझदार हो गई है हमारी रानी बिटिया। हाँ बिटिया, जरा अपनी उम्र तो बताना।
5: बता दूँ मम्मी?
3: हाँ शर्माओ नहीं, बताओ।
5: मेरी उम्र है 20 साल 48 महीने 116 घंटे और 52 सेकेंड।
4: वाह, देखा जे क्या मैथमेटिक्स है हमारी बिटिया की।
5: मैथमेटिक्स नहीं मम्मी, मैथमेटिक्स बोलिए।
3: अरे और आवाज देखी, एकदम रेडियो वाले।

0: क्यों अज्जू
1: जी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर कथे सुन ले तो 2 साल तक शर्तियां रेंगना ही भूल जाएंगे। हाँ
2: अजी सुनते हो?
0: हाँ
2: देखा तुमने? अरे अजय को भी भौतरी की तरह जानवर बहुत पसंद है। अजय
1: जी,
2: भौतरी तो जानवरों की दीवानी है।
1: क्यों नहीं क्यों नहीं, शक्ल भी तो उन्हीं पर गई है।
3: अरे अरे अरे अजय बेटे, मैं तो पूछना ही भूल गया, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई?
1: जी वो जोधपुर गई है बड़े भाई साहब के पास।
3: अधर्म, तब तो घोर अधर्म। अरे बिना उनके तो हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए।
1: बहुत ही नेक विचार है आपका, टांगा लाऊं आपके लिए?
3: वो क्या है कि अब आ ही गए हैं तो नाक ही तुम्हारा दिल क्यों तोड़े, तुम भी तो बुरा मान जाओगे ना?
1: जी, जी, जी, जी नहीं, एकदम नहीं एकदम नहीं, मेरा मतलब है कि इसमें बुरा क्या मानना है?
2: भाई अपनों से क्या बुरा मानना, क्यों जी? ऐसा है अजय बेटे, हम जरा तुम्हारा बाथरूम देखना चाहेंगे, हाथ मुंह धो ले, तब तक तुम भौतरी से बातचीत करते रहो, अभी आए। चलो जी
4: चलो,
2: लड़ना मत भौतरी।
1: गए आए।
5: तुम क्यों चिंता करते हो, तुम बैठो ना।
1: आप यू मुझे घूर घूर कर क्या देख रही है? क्या क्या कभी आपने जिंदा आदमी नहीं देखा?
5: सुनो, क्या तुमने कभी बकरा कटते देखा है?
1: जी जी जी जी, जी, जी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं।
5: छुरी जब बकरे की गर्दन पर चलती है तो कितना दर्द से बिलबिलाता है, मुझे बहुत मजा आता है।
1: अरे राम राम, कन्या होकर ऐसी बातें, अरे रौ रौ नरक मिलेगा तुझे।
5: सुनो जी, मुझे तुम्हारी शक्ल उसी बकरे जैसी लग रही है।
1: जी मैं और बकरे जैसा, और खुद को देखा है कांच में, काली भैंस।
5: आईना? आईना तो हमारे घर में है ही नहीं, डैडी बहुत चिढ़ते हैं ना, एक बार नानी के घर देखा था, देखते ही टूट गया।
1: बड़ा खुश किस्मत था, टूट कर मुक्ति तो मिल गई। हाँ
5: सुनो, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है प्रियतम?
1: देखिए देखिए, आप थोड़ा दूर से हैं। सुनिए, आपने ये नाखून क्यों बढ़ा रखे हैं?
5: जानी ये तुम्हारे लिए है, प्यार करूंगी तुम्हें।
1: नहीं नहीं नहीं, हे माँ रक्षा करो मेरी।
5: डरते क्यों हो, मैं हूँ ना तुम्हारी रक्षा के लिए। सुनो एक गाना सुनाऊं?
1: गाना गाना दूर रह के
5: मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई, यू ही नहीं दिल लुभाता कोई, लुभाता कोई।
3: अरे अरे अरे अरे अजाए, अरे कहाँ चले?
1: जी वो आप लोगों के लिए चाय लेने हैं।
3: अरे चाय भौतरी बनाएगी, जाओ भौतरी।
2: तुम हमारे पास बैठो।
1: जी सुनिए, आप लोग अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं?
3: हाँ हाँ हाँ हाँ पूछो।
1: जी दरअसल मैं आप लोगों को पहचान ही नहीं पाया, भाई आप लोग कौन हैं, मुझे कैसे जानते हैं? क्या आप अपनी लड़की के दिमाग का इलाज कराने आए हैं?
2: अरे बेटा, हमारी बिटिया का दिमाग 110% ठीक है।
3: सुनो अजय, मेरा नाम भृंगराज है और ये मेरी पत्नी सुनंदा, और हमारी प्यारी बिटिया भौतरी को तो तुम पहचान ही गए होगे।
2: अरे बेटे, हम तुम्हारे खानदानी समधी हैं, तुम्हारी चाची, तुम्हारी मौसी की बहन, तुम्हारी फूफा की साली, अरे सब की शादी हमारे खानदान में हुई है।
3: और अब हमारे खानदान का लेटेस्ट प्रोडक्शन भौतरी, प्रस्ताव तुम्हारे सामने है।
2: बोलो बेटा, निकाह कबूल है
1: जी? मैं आया एक मिनट में, मुझे ऑफिस का एक काम याद आ गया है।
5: अरे अरे।

0: मैं कितने प्यार से चाय बनाकर लाई हूँ। चीनी की जगह नमक, पत्ती की जगह काली मिर्च और पानी की जगह केरोसिन। पीकर तो देखो।
1: अरे चाय पिलाना अपना पिताश्री को, मैं चला।
2: अजय शुभ, आपको बड़ी शुभ बोला ऋषभ।
1: हे भगवान, जब बुरे दिन आते हैं ना तो छप्पर फाड़ कर आते हैं। चल बेटा अजय, खा ले डांट। मैं कम इन सर।
3: यस कम इन। आओ अजय, आओ बैठो।
1: जी।
3: और सुनाओ अजय, क्या हाल है?
1: मुझसे पूछ रहे क्या सर?
3: क्या बात है अजय, आज बड़े नर्वस मालूम हो रहे हो। रामलाल, दो कॉफी लेके आ जाओ। हाँ तो अजय, हम लोग विषय पे आ जाएं। अजय, तुम्हारा प्रमोशन ड्यू है ना? बधाई हो।
1: जी, थैंक यू सर, थैंक यू।
3: हाँ देखो अजय, दरअसल मेरा एक दोस्त है, शायद तुम्हारे यहाँ ठहरा हुआ है। उसकी एक बहुत स्वीट सी लड़की है, क्या नाम है उसका? भोत्री। भोत्री तो बहुत पैसे वाला है मेरा वो दोस्त। सारा घर भर जाएगा तुम्हारा, सारे सपने पूरे हो जाएंगे तुम्हारे।
1: सर, पूरे भारत में क्या मैं अकेला ही कुंवारा रह गया हूँ सर?
2: तुम्हें नौकरी करनी है या नहीं अजय? दिमाग से काम लो, जाओ मुझे सोच कर जवाब देना। और सुनो
1: जी,
2: मुझे ना सुनने की आदत नहीं है।

0: सो रहे हैं घोड़े बेचकर। चलो जान बची, मैं भी जल्दी से सो जाऊं।
1: आ गए अजय बेटे।
0: अजीब, मैं तो सो रहा हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है मुझे। अरे अरे आप मेरी टांग तो छोड़िए, अरे मैं कोई भाग थोड़े ही जा रहा हूँ।
2: बली का बकरा सुनो, क्या तुमने कभी बकरा कटते देखा है?
0: जी, जी, जी, जी।
2: बली का बकरा
3: जब बकरे की गर्दन पर चलती है तो कितना दर्द से बिलबिलाता है, मुझे बहुत मजा आता है।
2: बली का बकरा, बली का बकरा,
0: मेरा गला, मेरा गला, मेरा गला।
1: अरे आ जाए बेटे, अब क्या हुआ?
0: गला,
3: प्रियतम,
0: गला,
3: प्रियतम, क्या हुआ बेटे जी?
0: कुछ
3: क्या हुआ प्रियतम?
0: कुछ नहीं, बचपन से ही मुझे दौरा पड़ता है, इस दौरे के दौरान मुझे गला दबाने की इच्छा होती है और तभी तो मेरी शादी नहीं होती है। गला, गला दबाऊंगा, गला दबाऊंगा मैं।
1: भागो, सामान छोड़ो और भागो। अब ये तो
0: गला, अरे ठहरो ठहरो, मुझे तुम्हारा गला तो देते जाओ।
4: गला, गला, गला दबाऊंगा भाई, गला दबाऊंगा भाई, गला दबाऊंगा।
5: भाग गए, आधा सामान भी छोड़ गए, ये अच्छा हुआ। बोल बेटा अजय, बच गया ना बर्बादी से, कैसी रही? अरे बलि का बकरा खुद ही बलि चढ़ गया।
6: बलि का बकरा, अभी आपने ये झलकी सुनी। लेखक और निर्देशक थे मुकुल गोस्वामी। ये झलकी आकाशवाणी जयपुर की प्रस्तुति थी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं प्रीति शर्मा के साथ। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोनू निगम, हरिहरन और अनुपमा देशपांडे के गाए इस गाने से। इसे हमने लिया है फिल्म शरारत से। गीत समीर का है, संगीत साजिद वाजिद का।

आती जाती हैं, मुश्किलें बड़ी, हार हम कभी मानते नहीं। जान जाओगे, मान जाओगे, तुम अभी हमें जानते नहीं। ये बताएंगे बेटा कल तुझे

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में कांटे फिल्म का गाना। गीत देव कोहली का है, संगीत आनंद राज आनंद का।

0: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: कार्यक्रम का अगला गाना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में है। फिल्म का नाम है खाकी, गीत समीर का है, संगीत राम संपत का।

0: आइए अब सुनते हैं अरिजीत सिंह, निहिरा जोशी, देशपांडे की आवाजों में किल दिल फिल्म का गाना, गीत शाद अली का है, संगीत शंकर एहसान लॉय का।
1: एक ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

आइए अब सुनते हैं हेट स्टोरी 4 फिल्म का गाना, जुबिन नौटियाल और अमृता सिंह की आवाजों में। गीत मनोज मुंतशिर का है, संगीत मिथुन का।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमरीका और ईरान के बीच

0: मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी, उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
4: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
5: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट

0: करने आए थे उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
1: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
2: संकल्प एयरफोर्स और एसआईडीएम के द्वारा जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
1: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायिन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमरीका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नुआपड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
4: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित

0: राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉक्टर जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले दो से तीन दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रूपए पर बंद हुआ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि पहली जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनिए कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं प्रेम बंधन फिल्म के एक गाने के साथ। इसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में दर्द फिल्म का गाना, गीत नक्शलालपुरी का है, संगीत खयाम का।

कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है इश्क पर जोर नहीं। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत एस टी बर्मन का।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
6: आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आप तो ऐसे न थे फिल्म का गाना। गीत निदा फाजली का है, संगीत उषा खन्ना का।
7: हर रोज शाम सुनिए सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छाया गीत, जिसके प्रायोजक है विको वज्रदंती, मजेदार नहीं असरदार, भारत का गम एक्सपर्ट।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए कर्तव्य फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत कफील आजर का है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अप्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, पोते प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें उस गायक की जो कभी अपनी नर्मो नाजुक आवाज से आपको लुभाते हैं। तुझे तक

आज है सुरीले गायक सोनू निगम का जन्मदिन। आइए आज के फनकार कार्यक्रम में बातें करें जाने माने गायक सोनू निगम की।

जीरो से हीरो तक सफर तय करने वाले सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ था। उनके पिता अगम कुमार दिल्ली के मशहूर स्टेज गायक थे। अपने पिता की उंगली थाम सोनू ने 3 साल की नन्ही अवस्था से ही गायन का सफर शुरू कर दिया। अपने पिता के मार्गदर्शन में ही सोनू निगम ने अपने करियर के आकाश में रंग भरने शुरू किए। दिल्ली की बर्थडे पार्टियों और विवाह समारोहों में गाना गाने से लेकर हिंदी फिल्मों में सफल पार्श्व गायन तक सफर तय करना सोनू निगम के लिए काफी जटिल और संघर्षमय रहा, लेकिन उनके आत्मविश्वास, लगन और उनकी प्रतिभा ने कामयाबी का बुलंद सितारा बनाया।

सोनू निगम के बचपन के दिन काफी संघर्ष में रहे। उन्होंने 12वीं क्लास तक दिल्ली में पढ़ाई की, उसके बाद पत्राचार माध्यम से पढ़ा और शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान से संगीत की तालीम ली। दिल्ली के बाद सोनू निगम मुंबई आए और शुरू हुई उनकी जद्दोजहद। शुरुआत में उन्हें कई इम्तिहान से गुजरना पड़ा। उन्होंने कई म्यूजिकल शो में हिस्सा लेकर अपनी गायकी का लोहा मनवाया। बाल कलाकार के रूप में जब उन्होंने सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया तो उनके पास पुरस्कारों की झड़ी लग गई।

अपने करियर की शुरुआत में सोनू निगम मोहम्मद रफी की आवाज में गाने गाया करते थे। धीरे धीरे वे मोहम्मद रफी की आवाज बन गए थे। टी सीरीज की रफी की यादें नामक एल्बम के लिए सोनू निगम ने मोहम्मद रफी के गीत गाना शुरू किया। टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। बतौर पार्श्व गायक सोनू ने अपना पहला गीत गाया फिल्म आजा मेरी जान के लिए। उन्हीं दिनों वे रेडियो के लिए विज्ञापन बनाने लगे। साथ ही 1995 में एक टेलीविजन चैनल के लिए मशहूर कार्यक्रम सारे गामा का संचालन भी शुरू कर दिया। पलक झपकते ही ये कार्यक्रम कामयाबी के परचम लहराने लगा। इसके बाद सोनू निगम को फिल्म बेवफा सनम के लिए गाने का मौका मिला। गाना था

0: प्यार का।
1: सोनू निगम की सफलता का सितारा जिस फिल्म से चमका वो फिल्म थी बॉर्डर। अनु मलिक के संगीत से सजी इस फिल्म का सोनू निगम का गाया गीत हिट हुआ और लोगों के होठों पर सज गया।

1999 में सोनू निगम का नॉन फिल्मी गीतों का एल्बम दीवाना रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने प्रेम गीतों में अपना जलवा दिखाया। मोहब्बत करने वाले जोड़े अपनी मोहब्बत का इजहार दीवाना एल्बम के गीतों से आज भी करते हैं।

नदीम श्रवण के संगीत से सजी फिल्म परदेश का सोनू निगम का ये गाना खूब मकबूल हुआ। ये दिल दीवाना गाने ने लोगों को दीवाना बना दिया।

बाद मोहम्मद रफी की परछाई कहलाने का फैसला सोनू निगम ने बदल दिया और अपनी एक अलग खास पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उनकी हर कोशिश कामयाब रही। उनके गायन का उच्च शिखर आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया।

सोनू निगम ने कई भाषाओं में गाने गाए, मसलन कन्नड़, असमिया, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, नेपाली, छत्तीसगढ़ी, मलयालम वगैरह वगैरह। कई भाषाओं के साथ ही साथ हर तरह के गाने उन्होंने गाए। हर मिजाज का गाना दिल की धड़कनों तक उतरा। चाहे खुशी भरा पार्टी गीत हो, प्रणय निवेदन करता प्रेम गीत हो, उदास गीत हो या दर्द से रुला देने वाला गीत हो, हर गीत में उनकी आवाज बेमिसाल होती है। दिल को चीर देने वाला गम के सागर में डूबा, फिल्म के दृश्य को आंखों के सामने ला, आंसुओं से सराबोर करता ये गीत सुनिए।

मजबूरियों से हारो मत, उनका डटकर मुकाबला करो। इस फलसफे के साथ सोनू निगम ने करियर के कई आयाम तय किए। शास्त्रीय संगीत का खूब रियाज किया उन्होंने, ये रियाज उनके गायन में खूब झलकता है। अभिनय में भी उन्होंने अपना करियर आजमाया। फिल्म बेताब में वे बाल कलाकार के रूप में पर्दे पर नजर आए थे। बाद में जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी, काश आप हमारे होते और लव इन नेपाल जैसी फिल्मों में नजर आए। फिलहाल सुना जाए ये गाना।

सोनू निगम ने कई म्यूजिकल शो में जज बनकर और होस्ट बनकर छोटे पर्दे पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। उनके स्टेज शोज खूब हिट होते हैं और उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया। सोनू निगम को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आइए एक नजर डालें। फिल्म कल हो ना हो इस गाने के लिए सोनू निगम को मिला सर्वश्रेष्ठ गायक का राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार।

0: करती रहे।
1: इसके अलावा सोनू निगम को देश विदेश के अनगिनत पुरस्कार मिलते रहते हैं। लंबी फेहरिस्त है उन्हें मिले पुरस्कारों की। आइए सोनू निगम के कुछ मशहूर गीतों पर नजर डालें। ये फिल्म है

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक सोनू निगम पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में होगा कार्यक्रम छाया गीत।
1: छाया गीत के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाय गीत के सभी श्रोताओं को जी श्याम का नमस्कार। जान आती है तेरे आने से।

से, डूबता जी है तेरे जाने से, आपके आने से एक फजा बनती है, हम सांस भी ले तो खुशबू बनती है, कोई कुछ भी कहे आपके आने से ही सुहानी शाम बनती है।

सिंगार मेरा है उनके लिए, मेरी हर बात में बात है उनके लिए। यकीन है मुझे छुप छुप के जो आता है अभी मेरी गली में, एक रोज मेरे साथ सरे आम चलेगा।

सजना है मुझे यूं ही हंसी ख्वाबों की तरह, तेरी नजरों में बस जाऊं अदाओं की तरह। महके हैं गुलाब यूं जूं तेरी हंसी में, अब तो सजने को तैयार हूं तेरे प्यार की तरह।

रगों में घुला है ये प्यार का मौसम, रगों में घुला है ये प्यार का मौसम, तू न जाना मेरे दिल के पास रहे तू हर दम, तेरी आहटें हों जब साथ बढ़ जाती है उमंग, तू मुझसे दूर ना जा मेरा दिल है बंधा तेरे संग।

आप जहां भी रहते हो हमारी दुआओं में रहते हो, दिल की धड़कन में कभी तो कभी आंखों में समाए रहते हो। दूरी का एहसास ही नहीं होता, हमारी यादों में आप हर पल रहते हो।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप एमसीक्यूज रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: और आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में।

0: सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे

0: मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक तंत्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जिससे परीक्षा प्रणाली मजबूत होगी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sai Ramuchtaba. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. The bill was passed by the Lok Sabha yesterday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. It further provides that investigations into offences must be completed within 2 months from the date the information is recorded at the police station. The trials must be concluded within 3 months from the filing of the charge sheet. Parliament has also passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jan Gana Mana and make the insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Prime Minister Narendra Modi has said the government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government have faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk." He said, "Keeping all this in mind, reforms in the education and examination system have become essential across the country, both in the states and at the centre." The Prime Minister said today Parliament has passed the bill containing stringent legal provisions. He highlighted that a transparent, technology-driven examination system, stronger anti-paper leak laws, and tough action against exam mafias is important to protect students' hard work. Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting of the Cabinet Committee on Security, CCS, to review the situation in the context of ongoing West Asia conflict and measures taken by various ministries and departments.